एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के आश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 22 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
1: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहाँ या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान

0: और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

जिस प्रकार भोर की प्रथम किरणों के साथ कुछ पुराने फूल झड़ जाते हैं और नए फूल खिल उठते हैं, प्रकृति को सुवासित करते हैं। कुछ सूखे पत्ते पेड़ से जमीन पर गिर जाते हैं और नई कोंपलें फूट पड़ती हैं और प्रकृति को श्रृंगारित करते हैं। उसी तरह एक नया दिन एक नई ऊर्जा और एक नए विचार के साथ आता है। एक नया दिन आता है तो साथ में नया उल्लास और नई आशा भी लेकर आता है, ताकि हम अपने जीवन को नए विचारों से सुवासित और उल्लासित कर सकें। समय के साथ साथ जो पुराना है, जो तज्ज है और जो अनावश्यक है, उसका परित्याग करना भी अनिवार्य हो जाता है। मानव मन को भी रोज रोज सद्विचार और सत्संग रूपी साबुन से सफाई की ज़रूरत होती है, ताकि कुविचारों की कलुषता को अच्छे से साफ करके जीवन को उज्ज्वलता और ध्वलता प्रदान की जा सके और विचारों की कलुषित का मार्जन हो सके।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं, ईश्वर के मनन से करते हैं।

प्रभु पे विश्वास जीवन के अंतिम सांस तक रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और प्रभु की भक्ति में अगर विश्वास हो तो जीवन के सारे कष्ट दुख दर्द दूर हो जाते हैं।

0: ईश्वर के प्रति समर्पण और मन की शांति के लिए भक्ति और आस्था से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जब जीवन में परेशानियां घेर लेती हैं, तो भगवान का नाम ही हमें संबल देता है।
1: नर और नारायण बद्रिका ग्राम में शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर केदार नाम स्वप्न में भी दुख प्राप्त नहीं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्रीराम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीतों का आनंद उठाइए कार्यक्रम शुभ प्रयाग में सुबह 7:40 पर, और प्रातः 8:30 पर हम प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। सुबह 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:00। 10:30 का समय है लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। कव्वालियां हम आपको सुनवाएंगे सुबह 11:05 पर, और 11:30 का समय है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:50 पर, 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर, और न्यूज 8:09 रात्रि 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:00 और दोपहर 12:30 का समय है बहनों के कार्यक्रम सुनो सखी का। दिन में 1:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। भजन हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर, और शाम 5:25 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। आज का ये अंक खेल समाचारों पर आधारित होगा। सदाबहार गीतों का आनंद उठाइए शाम 6:05 पर, कार्यक्रम रहेगा सुरमई सांझ, और 6:30 का समय है कार्यक्रम मौजा गराइंदियां का। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। रात्रि 8:00 डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई गेम्स 2026 का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:30 पर, और रात 9:15 पर एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत।

0: अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य गुजरातस्य वडोदरा नगरे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य 75वें वार्षिके दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। समारोहावधौ राष्ट्रपति पदासीनया मुर्मू वर्यया 600-12,000 विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदास्यति। स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रमेषु शैक्षणिकोपलब्धिभ्यः सा विद्यार्थिभ्यः सुवर्ण पदकानि अपि प्रदास्यति। तदनन्तरम् असौ वडोदरा नगरे ब्रह्मकुमारीज इति संस्थायाः ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। कार्यक्रमस्य अन्तर्गते सा विश्वस्य नवनिर्माणाय आध्यात्मिक जागरणम् इति परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति तथा विकसित भारताय युवा राष्ट्र निर्माणाय आन्तरिक शक्तेः जागरणम् इति अभियानस्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भं करिष्यति। राष्ट्रपतिः गुजरातस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः गुजरातस्य एकता नगरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य भव्य पृष्ठभूमौ आयोजिते समारोहे भारतीय चलचित्र क्षेत्रस्य प्रमुख प्रतिभाभ्यः 24,000 वर्षस्य 270वें राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदत्तवती। चलचित्र जगतः जनान् संबोधयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मू उक्तवती यत् चलचित्रं भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक वैविध्यतां प्रतिबिम्बयति तथा विभिन्न भाषाणां प्रादेशिक परिप्रेक्ष्यानां राष्ट्रियाभिलाषाणां च मध्ये सेतु रूपेण कार्यं करोति।
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
0: समारोहे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषितवान् यत् राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोह अधुना देशस्य प्रमुखेषु पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यन्ते। सः राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च भविष्ये पुरस्कार समारोहाणाम् आतिथ्याय प्रमुख स्थलानां चयनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। समारोहे राष्ट्रपति वर्यया देशस्य आहत्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगतेभ्यः 92 पुरस्कार विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तम्। प्रसिद्धः कन्नड अभिनेता अनंत नागः भारतीय चलचित्र क्षेत्रे 5 दशकाधिककालपर्यन्तं प्रदत्तस्य उत्कृष्ट योगदानस्य कृते प्रतिष्ठितेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां उडुपी इत्यत्र श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिना अन्यैः गणमान्यैः च सह मिलितवान्। अस्मिन् अवसरे श्री मोदिना पद्म विभूषण यतिकुला चक्रवर्ती श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः जन्म शताब्दी समारोहस्य प्रतीक चिह्नस्य अनावरणं कृतम्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः भक्त्या ज्ञानार्जनेन सेवया च परिपूर्णं जीवनम् असंख्य जनान् निरन्तरं प्रेरयति। सः उक्तवान् यत् तस्य जन्मशताब्द्याः उपलक्ष्ये क्रियमाणाः विविधाः उपक्रमाः तस्य महनीयादर्शान् अग्रे नेतुम् अधिकं साहाय्यं करिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन आगामिषु द्विदिवसेषु छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आंध्रप्रदेश तेलंगानानां पृथक पृथक स्थलेषु प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्त वर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया है कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है, जहां व्यवसायों को कई सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित हितधारकों की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्थानों पर विभिन्न विभागों के कार्यालय बनाने के बजाय एकीकृत कार्यालय व्यवसायों को विभिन्न सेवाओं तक पहुँच में मदद करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमरीका छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमरीका पर निर्भरता कम करना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। मनु भाकर, सुरुचि सिंह और ईशा सिंह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। वहीं मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में चीन का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara today. She will also launch Brahma Kumari's campaign and inaugurate the Global Spiritual Palace at Vadodara. More from our correspondent.
1: In the 75th convocation ceremony, President Murmu will confer degrees to over 12,600 students. This includes 6,713 from the Faculty of Commerce and 1,102 from the Faculty of Technology and Engineering. During the ceremony, a total of 201 gold medals will be awarded to 160 students for their academic achievements in the undergraduate and postgraduate courses. After that, the President will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, the President will also inaugurate the Spiritual Awakening for the World Renewal Project and will virtually launch the Youth for Viksit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. Gujarat Governor Acharya Devrat and Chief Minister Bhupendra Patel will be present on the occasion. Mayur Solanki, Akashwani News, Vadodara.
4: Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in Ektanagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives, and shared national aspirations." Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. He said Global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance and connectivity bottlenecks. Dr. Jayashankar also met Italy's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani on the sidelines of the United Nations General Assembly. In a social media post, the minister said their discussions focused on the Gulf situation, the India-Middle East-Europe economic corridor and the Ukraine conflict. He said the two countries aimed to expand collaboration and increase trade ties. Canadian Prime Minister Mark Carney has said trade negotiations with India are making good progress and the two countries are aiming to conclude talks by the G20 summit in mid-December. Mr. Carney also said to his understanding Prime Minister Narendra Modi would visit Canada around that time, though the precise date had not been finalized. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said integrated commerce and industry offices are being envisioned in major cities to provide businesses with a common point of access to multiple government departments and agencies. He made the announcement at a stakeholder workshop organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade in New Delhi yesterday. Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasad also attended the program. The Ministry of Ayush will host the 11th Ayurveda Day in Nagpur, Maharashtra today under the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow. The ministry said Ayurveda institutions, practitioners and stakeholders will participate in the celebrations across India and worldwide. The ministry said that the celebrations will bring together key stakeholders from across the Ayurveda ecosystem, providing a platform for knowledge exchange and wider engagement. At the Asian Games, double Olympic medalist Manu Bhakar and Tokyo 2020 silver medalist Mirabai Chanu will lead India's Day 4 campaign at Aichi Nagoya in Japan today, with several medal opportunities in the offing. In shooting, Manu Bhakar will compete in the women's 10-meter air pistol event alongside Suruchi Singh and Isha Singh. The trio will compete in the team event and individual qualification this morning, with the individual final scheduled later in the day. And that is the end of this news bulletin.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी।

सुबह सुहानी। मुस्कुराइए की एक खूबसूरत सुबह और कार्यक्रम सुबह सुहानी के साथ हम आपके रेडियो सेट पर दस्तक दे चुके हैं जी। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना आपके साथ, और आप सुन रहे हैं FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी धर्मशाला। और आज हवाओं में दोस्तों एक बेहद खूबसूरत सी ठंडक और नई उम्मीद भी खुली हुई है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों की सुबह की शुरुआत बहुत ही शानदार रही होगी। और कार्यक्रम सुबह सुहानी से आपकी सुबह को और भी हम खूबसूरत बनाएंगे, और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बेहतरीन गीत और ढेर सारी जानकारी के साथ हम आज इस कार्यक्रम में हाजिर हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

जी श्रोताओ, हर सुबह अपने साथ कुछ नया लेकर आती है हमारे जीवन में, और साथ ही लेकर आती है एक खाली पन्ना भी। और ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस पन्ने पर क्या लिखते हैं। तो चलिए अब दिन की शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम सुबह सुहानी की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ श्रोताओ, अक्सर हम आने वाले कल की चिंता में आज के इस खूबसूरत पल को जीना भूल जाते हैं। जो बीत गया वो कल था, जो आने वाला है वो एक सपना है, लेकिन जो आज हमारे पास है वही असली तोहफा है। इसलिए आज के दिन को पूरी शिद्दत से जिए, मेहनत करें और साथ ही मुस्कुराते रहें। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ाते हैं आज के इस शो को आगे और सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

गाइड फिल्म का ये गीत श्रोताओं आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। और कार्यक्रम में अब समय है इतिहास के पन्ने पलटने का। जी हाँ, अब हम बात करेंगे आज विशेष की। तो श्रोताओं, साल 1965 से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 23 सितंबर को विराम यानी कि सीज फायर किया गया। और साल 1872 में आज के दिन रिचर्ड रोड्स ने सुनने में मदद करने वाली पहली मशीन बनाई और इसे ऑडियोफोन का नाम दिया गया। इसके साथ ही 23 सितंबर सन 1929 को बाल विवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी गई और इसे शारदा कानून के नाम से जाना गया। 23 सितंबर सन 2009 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारतीय उपग्रह ओशन सेट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए। और साल 2020 में आज ही के दिन भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान था।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है FM धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ और हम आपको बता दें कि 23 सितंबर सन 1908 को जन्म हुआ हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख कवियों, निबंधकारों और लेखकों में से एक रामधारी सिंह दिनकर जी का। उन्हें आधुनिक युग का श्रेष्ठ वीर रस का कवि माना जाता है और आज़ादी के बाद वे राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। दिनकर जी की कविताओं की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां राष्ट्रवाद, साहस, विद्रोह और क्रांति की पुकार है, वहीं दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाएं भी देखने को मिलती हैं और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे भागलपुर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त हुए और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य भारतीय जनमानस की आवाज़ है और आज भी जन समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार या फिर संकट की स्थिति होती है तो लोग उन्हीं की पंक्तियों का सहारा लेकर आंदोलन करते हैं। वे कल भी प्रासंगिक थे और आज भी हैं। इसी के साथ श्रोताओं, आज हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। और 23 सितंबर सन 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की स्थापना हुई थी और इसी की याद में संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर यानी कि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और पहली बार ये दिन मनाया गया साल 2018 में और ये दिन भाषा बोल या सुन न पाने वाले लोगों को इशारों और शारीरिक हाव भाव के जरिए अपनी बात समझाने और समानता का अधिकार दिलाने में मदद करता है। और साल 2026 का थीम है डिक्लेयरिंग डेफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स यानी कि बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों की घोषणा करना।

जी श्रोताओं, हम बिल्कुल धीरे चल रहे हैं लेकिन आपके साथ चल रहे हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और यूं तो आयुष मंत्रालय ने साल 2016 से धन्वंतरी जयंती के अवसर पर ये दिन मनाने की शुरुआत की थी, लेकिन मार्च 2025 से अब इस दिन को मनाया जाने लगा है 23 सितंबर के दिन। और 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का थीम है स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद, और ये दिन जिस उद्देश्य के लिए मनाया जाता है वो ये है कि लोगों को प्राकृतिक जीवन शैली और आयुर्वेद अपनाने के लिए जागरूक किया जाए, और इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को स्वास्थ्य सेवा की एक बड़ी पहचान भी दिलाई जाए। साथ ही आयुष मंत्रालय और MyGOV क्विज पोर्टल के सहयोग से विशेष ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन भी आज किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने पर ई सर्टिफिकेट भी मिलता है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है समाचारों के बारे में जानने का। तो जानते हैं आज देश दुनिया में आज के मुख्य समाचार क्या हैं। एशियाई खेल 2026 में भारत को महिला क्रिकेट टीम ने पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है, जहां भारतीय टीम ने श्रीलंका को 147 रनों के अंतर से मात दी। और इसके साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बायो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को मंजूरी दी है, जो दवाओं और अंगों के प्रत्यारोपण सुरक्षा निगरानी को बढ़ाएगा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने V4+ India बैठक सहित फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इक्वाडोर के समकक्षों से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों पर अहम चर्चा की है। और दुनिया भर में गैंडों की बची हुई 5 प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 24 से 28 सितंबर के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में फिर से बारिश होने के आसार हैं।

और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और सैलानियों की सुविधा के लिए राज्य में होटल, ढाबे, दुकानें और शोरूम 24 घंटे खुले रखने का बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इसके साथ कुछ आवश्यक शर्तें भी तय की गई हैं। और मानसून के चलते 2 महीने से लगी रोक के बाद देश दुनिया के मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट बीर बिलिंग में एक बार फिर से उड़ानें शुरू हो गई हैं। और कांगड़ा के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए श्रद्धालुओं के मंदिर के अंदर बैग और पानी की बोतल ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। श्रोताओ, समाचारों की सुर्खियों के बाद समय है आपके मनोरंजन का, तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, आज के सुबह सुहानी कार्यक्रम में हमारा और आपका सफ़र बस यहीं तक, और जाते जाते बस यही कहेंगे, अपनी मुस्कान को कभी फीका मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और के दिन को खूबसूरत बना सकती है। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया।

0: है, अब वंदना रैना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश

0: ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्पविकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ

0: ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वत से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
4: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
5: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
1: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
0: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
2: मैंने पास पीजीवीसील का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
0: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम है। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. US President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor. Stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today.

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
2: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: सिर्फ इसे नहीं, सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
3: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश राज्य जनहित में जारी।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
7: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने, बोल लिखे हैं जलीस रशीद ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
2: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: गाने सुहाने डीजे सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है संजीव दर्शन ने और ये गीत हमने लिया है फिल्म आशिक से।

कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मासूम से। आवाजें हैं अभिजीत और साधना सरगम की।

0: TCL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। जीत फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अलका याग्निक और विनोद राठौर का गाया हुआ। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 6वें संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व GM हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्री

0: काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से, योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
1: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
0: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
2: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए, वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास, जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए, जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जल सुरक्षा की तरफ हम हैं। हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
0: सुरक्षा
2: और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
0: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलेटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलेटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं। उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं। और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं।
1: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जय से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है। और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू के काम होता है।
0: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है। क्योंकि आमतौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया। तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
2: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है
0: जी?
2: भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और वो महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है। और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है। ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है। जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्व

0: कांचा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा, तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था, और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है जिसपे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्क संगत फैसले लेती हैं वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में, और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,19 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर मैं

0: आपसे ही पूछ रहा हूं, जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा
1: उस समय
0: है।
1: गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका जगह उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
1: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है। अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है और उनके लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। अब फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है, और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियलिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने, क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पहले भी था, लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
0: बिल्कुल। और अरोड़ा साहब, हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई, आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
2: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य।

0: जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल है उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासतौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान ली 5000 की हुई है, 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी फुल डिसेबिलिटी तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज सालाना केवल, और 31 मई को कटता है, 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए। तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का, 20 रुपीज होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, खाना है, इलाज कराना है और सीधा आप साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
1: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ, इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है?
2: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या, झाड़ू लगाना है क्या? लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ

0: है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है? जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
1: लिमिटेड।
0: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
2: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
1: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल्स वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो 15 अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर रही है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है, जो एक कभी ये बैंक की तरफ आ ही नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था, आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी एक कितना बड़ा बदलाव होगा, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें, यानी एक तरह से एक सुविधा होगी, 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
2: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे, कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
0: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पर जो अच्छा गड़बड़ी हुई है या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है, एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
2: जी जी,
0: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई OTP नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉगिन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
2: जी,
0: क्या नहीं करना है, अपने OTP शेयर नहीं करना है। हम देखिए आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे OTP मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, PM स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
2: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
1: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई OTP नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112 या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन कर
0: और जल्द से जल्द करें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 6th संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:50 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। आयुष मंत्रालय आज मना रहा 11वां आयुर्वेद दिवस, देश सहित प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यापार को गति देने के उद्देश्य से 24 घंटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें खुला रखने का लिया निर्णय, अधिसूचना जारी। कुल्लू जिला में इन दिनों जापानी फल की फसल तैयार, मंडियों में पहुंचना हुई शुरू। बधिर लोगों के मानवाधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और लाहौल में इन दिनों इको पदयात्रा का आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालु ले रहे भाग। अब समाचार विस्तार से। आयुष मंत्रालय आज बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और विश्वभर में आयुर्वेद संस्थान इससे जुड़े लोग समारोह में भाग ले रहे हैं। इस दौरान आयुर्वेद को मजबूत करने और समुदाय की भलाई को आगे बढ़ाने में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल

0: मीडिया पोस्ट में कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से इस समृद्ध विरासत को और मजबूती से अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस बीच आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुष और योगा को अपनाने पर बल दिया।
1: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: इस बीच आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान रिज मैदान शिमला पर आयुष विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी और परामर्श शिविर में भाग लेकर स्वास्थ्य का लाभ लेने का आह्वान किया है। प्रदेश सरकार ने राज्यों में व्यापार को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। श्रम रोजगार और ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्यों के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को 24 घंटे और सप्ताह में सातों दिन संचालित करने के लिए विशेष छूट प्रदान की है। इसके तहत प्रदेश दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान 1969 की धारा 9 और 10 के प्रावधानों तथा 1972 के नियमों से जनहित में तत्काल प्रभाव से छूट दी गई है। यह छूट एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार आपदा की आड़ में लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं। कांगड़ा जिला के बैजनाथ में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि भाजपा के कड़े रुख और सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ी गई कानूनी के चलते पंचायत चुनाव हो पाए। नेता प्रतिपक्ष ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया। बधिर लोगों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए इस वर्ष का विषय है बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा। विश्व बधिर संघ भी 27 सितंबर तक बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मना रहा है, जिसमें समावेशी शिक्षा, बधिर संस्कृति और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह विषय जीवन के सभी क्षेत्रों में बधिर लोगों के अधिकारों को वास्तविकता बनाने का आह्वान करता है, जिसमें राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से उन तक पहुंच बनाने पर बल दिया गया है। यह दिन इस वर्ष इसलिए भी खास है क्योंकि यह बधिर संघ की 75वीं वर्षगांठ और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाए जाने के 20 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार, 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला में इन दिनों जापानी फल की फसल तैयार हो गई है और कुछ इलाकों से मंडियों तक पहुंचना भी शुरू हो गई है और किसानों को उनके उत्पाद के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
5: कुल्लू जिला के निचले क्षेत्रों में पिछले 7 सालों से जापानी फल का बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है तथा जिला में करीब 216 हेक्टेयर भूमि पर जापानी फल का उत्पादन किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसकी पैदावार 700 टन के लगभग है। किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। जिला के विभिन्न इलाकों में करीब 50% जापानी फल का सौदा व्यापारियों ने बगीचों में ही कर दिया है। यूपी, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों से आए व्यापारी बागवानों के घर द्वार पहुंचकर जापानी फल के बगीचे खरीद रहे हैं। वहीं जापानी फल अपने औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक

0: उन्होंने 12वीं और 13वीं शताब्दी के महान तिब्बती बौद्ध योगी गोत्संगपा की साधना स्थली और उनकी पावन परंपराओं के बारे में बताया। रिम्पोचे ने कहा कि भागा घाटी और गर्शा क्षेत्र के जुड़े कई पवित्र स्थल गोत्संगपा तक सीमित नहीं बल्कि हिमालय की प्रकृति, संस्कृति और धरोहर को सहेजने का अनूठा प्रयास है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और कुछ अन्य संगठनों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगें रखी हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बैंक कर्मचारियों के काम के माहौल, पारदर्शिता और कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला, दैनिक जागरण व पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है, हिमाचल में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान। दैनिक दिव्य हिमाचल की एक अन्य खबर है, हिमाचल में बनी 64 दवाएं जांच में फेल। दैनिक भास्कर की एक अन्य खबर है, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट अवैध माना जाएगा वाहन का पंजीकरण। शिमला के संजौली समिट्री क्षेत्र में निर्माणाधीन भूमिगत टनल के ऊपर स्थित मकानों में आई दरारों व अन्य नुकसान के संबंध में कल शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित क्षेत्र में राजस्व विभाग के अधिकारी ऐसे मकानों को चिन्हित करेंगे जिनमें मुरम्मत की आवश्यकता है। NHAI ने अवगत करवाया कि वर्तमान में सुरंग निर्माण कार्यों के लिए किसी प्रकार की ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष मंत्रालय आज मना रहा 11वां आयुर्वेद दिवस, देश सहित प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यापार को गति देने के उद्देश्य से 24 घंटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें खुला रखने का लिया निर्णय, अधिसूचना जारी। कुल्लू जिला में इन दिनों जापानी फल की फसल तैयार, मंडियों में पहुंचना हुई शुरू। बधिर लोगों के मानवाधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और लाहौल में इन दिनों इको पदयात्रा का आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालु ले रहे भाग। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम गीतों का कारवा लेकर। और आज के सफर में आप सभी के हम सफर, आपकी रेडियो दोस्त प्रवीण। सभी श्रोताओं को सुप्रेम नमस्कार।

पत्थर दिल फिल्म से यह गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। गुरदास मान की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और बोल आनंद

0: था रब से पहले, इश्क था शायद सबसे पहले।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: गीतों का कारोबार, यह कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हमसे नाटक राना इस फिल्म का गीत आपकी रेडियो सेल्स पर कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं गीतों का कारवां। राजा भैया फिल्म से ये खूबसूरत संगीत हमारे श्रोताओं की रेडियो सेट्स पर उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, समीर की बोर नदीम, श्रवण का संगीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अब सुनिए हीरा फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, रविंद्र जैन का संगीत।

इसी गीत के साथ हमारा आज का गीतों का कारवा यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर। कार्यक्रम पहाड़ों के सुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अशोक चौधरी की आवाज में।

पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हरिचंद की आवाज में ये लोकगीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आयुष मंत्रालय आज बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और विश्व भर में आयुर्वेद संस्थान और इससे जुड़े लोग समारोहों में भाग ले रहे हैं। इस दौरान आयुर्वेद को मजबूत करने और समुदाय की भलाई को आगे बढ़ाने में प्रमाण अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से इस समृद्ध विरासत को और मजबूती से अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। इस बीच आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुष और योगा को अपनाने पर बल दिया है।
1: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: इस बीच आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान रिज मैदान शिमला पर आयुष विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी और परामर्श शिविरों में भाग लेकर स्वास्थ्य का लाभ लेने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। राष्ट्रपति 6 अक्टूबर को श्री नैना देवी जी मंदिर में दर्शन के बाद एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसी कड़ी में जिला में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की। बैठक में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एम्स बिलासपुर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यापार को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। श्रम, रोजगार और

0: ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्यों के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन संचालित करने के लिए विशेष छूट प्रदान की है। इसके तहत प्रदेश दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान 1969 की धारा 9 और 10 के प्रावधानों और 1972 के नियमों से जनहित में तत्काल प्रभाव से छूट दी गई है। यह छूट 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। कुल्लू जिला में इन दिनों जापानी फल की फसल तैयार हो गई है और कुछ इलाकों में मंडियों में पहुंचना भी शुरू हो गई है और किसानों को उनके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं।
1: कुल्लू जिला के निचले क्षेत्रों में पिछले 7 सालों से जापानी फल का बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है तथा जिला में करीब 216 हेक्टेयर भूमि पर जापानी फल का उत्पादन किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसकी पैदावार 700 टन के लगभग है। किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। जिला के विभिन्न इलाकों में करीब 50% जापानी फल का सौदा व्यापारियों ने बगीचों में ही कर दिया है। यूपी, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों से आए व्यापारी बागवानों के घर द्वार पहुंचकर जापानी फल के बगीचे खरीद रहे हैं। वहीं जापानी फल अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है तथा फाइबर मात्रा भी अधिक होती है। इसका सेवन हृदय के लिए भी बेहतर माना जाता है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: लाहौल में इन दिनों इको पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 25 सितंबर तक चलने वाले इस पदयात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: दारचा से त्रिलोकनाथ को जा रही इको पद यात्रा के तीसरे दिन यात्रियों ने लाहौल की गहरी आध्यात्मिक विरासत को समझा। केलांग से रांगबी गांव की ओर बढ़ते हुए बिलिंग में विश्राम के दौरान भूटान के धर्मगुरु डोखम्पा खम्चू रिम्पोछे ने यात्रियों को संबोधित किया। उन्होंने 12वीं और 13वीं शताब्दी के महान तिब्बती बौद्ध योगी गोत्संगपा की साधना स्थली और उनकी पावन परंपराओं के बारे में बताया। रिम्पोछे ने कहा कि भागा घाटी और गर्षा क्षेत्र के जुड़े कई पवित्र स्थल गोत्संगपा की साधना से जुड़े हैं, जो लाहौल की सांस्कृतिक पहचान का टूट हिस्सा है। ये पदयात्रा केवल पैदल चलने तक सीमित नहीं बल्कि हिमालय की प्रकृति, संस्कृति और धरोहर को सहेजने का अनूठा प्रयास है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं और हम हाजिर हैं कव्वालियां लेकर। पेशी खिदमत है कुछ कव्वालियां हमारे श्रोताओं के लिए। कव्वालियों के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है।

जोली LLB2 फिल्म से ये कवाली हमने ली है सुखविंदर सिंह कादिर मुस्तफा की आवाज, विशाल खुराना का संगीत जुनेद वासी के बोल।

वीर ज़ारा फिल्म से ये कवाली हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और जावेद हुसैन की आवाज़ें, मदन मोहन का संगीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:30 होने को है और अब हाजिर है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
3: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
3: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल।
3: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
3: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ न कोई ट्रेन है और न जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
2: जी।
3: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
3: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
2: जी।
3: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
3: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई।

0: या ठंडी
1: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
1: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
1: जी,
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
1: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
1: जी,
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
1: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहां पहुंचता है जहां वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
1: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है, जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ ज़ू?
3: अ ज़ू?
2: यस, अ ज़ू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ ज़ू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: monkey, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe and so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready.
2: The poem goes like this. we are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
3: Yay!

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी परेशान होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
2: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें,

0: जाते
1: किसी एक दिन।
2: एक दिन जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा,
3: देखो डाकी आया।
2: चंचल सोचने लगी,
3: डाकिया ये कौन?
2: बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
4: डाकिया अंकल
5: आओ बेटा।
4: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
5: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
4: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
5: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
4: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
5: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
4: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
5: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
4: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
5: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
4: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
5: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
4: ओह आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
5: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
4: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
5: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
4: हाँ, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल और साथियों की।

विशाल ढडलानी का लिखा हुआ गीत लीजिए सुनिए, हंसिका अय्यर और एकॉन का गाया हुआ। संगीतकार हैं विशाल शेखर और फिल्म का नाम है रावण।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और आशा भोसले ने। संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो सखी।

0: कार्यक्रम सुनो सखी में सभी सखी सहेलियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस अंक में मैं हूं आप सभी की रेडियो सखी प्रवीण। हमारा सभी श्रोताओं को सुप्रेम नमस्कार। तो सखियों, सबसे पहले सभी श्रोताओं को 11वें आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आज हमारे स्टूडियो में यानी आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आरती पठानिया। तो डॉक्टर आरती पठानिया, आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद मुझे अपने शो पर इनवाइट करने के लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, तो हम आपको ये बता देते हैं और सभी श्रोता जानते भी हैं कि आज हम सब मना रहे हैं 11वां आयुर्वेद दिवस। डॉक्टर आरती पठानिया, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आयुर्वेद दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है।
1: जी, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को 11वें आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वर्ष 2026 का जो आयुर्वेदा दिवस का जो मुख्य थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर हेल्दियर टुमोरो, स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। तो आयुर्वेद दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद भारत की 5000 वर्ष पुरानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांतों, जो हमारे प्राकृतिक उपचार हैं, उन शैलियों को देश और दुनिया भर में बढ़ावा देना है। आयुर्वेदा सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की शैली है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चला सकते हैं। इसमें आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग, प्राणायाम, इसके माध्यम से हम किस प्रकार अपने जीवन शैली को स्वस्थ रह सकते हैं, इन सब से आम जनता को अवगत कराना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामने लाना भी इस आयुर्वेद दिवस का मुख्य उद्देश्य है।
0: जी डॉक्टर पठानिया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सभी श्रोताओं को इसका उत्तर दिया और समझाया। अब हमें ये बताइए डॉक्टर आरती पठानिया जी कि आज की जिस तरह की जीवन शैली है, भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, तो आयुर्वेद की प्रासंगिकता को आप किस प्रकार देखते हैं?
2: जी, आजकल की जो भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, या हम यूँ कहें कि आज की हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही तनावपूर्ण जीवन शैली है। तो इस तनावपूर्ण जीवन शैली में जो आयुर्वेद की प्रासंगिकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो आज के युग में जो जितनी

0: भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो किसी संक्रमण की वजह से नहीं है, वो हमारे गलत जीवन शैली की वजह से है, जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। चाहे हम हाई ब्लड प्रेशर देख ले, बीपी देख ले, थायराइड की समस्या देख ले, आजकल लोगों में स्ट्रेस की, एंजाइटी की, अनिद्रा की, डिप्रेशन की, ये समस्याएं जो है वो लोगों के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आयुर्वेद का एक मूल मंत्र है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, कि जो स्वस्थ है व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा आयुर्वेद करता है, और जिन्हें रोग हो गया है उनके उनके रोग को भी जो आयुर्वेद जो है वो जड़ से नाश करता है। तो इस प्रासंगिकता में हम देखें तो हमारे पास दिनचर्या है, हमारे पास ऋतुचर्या है, हमारे पास आहार विहार है, जिनके जो एक स्पष्ट नियम जो है वो आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाकर स्वस्थ जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो आज के टाइम में जो एक कॉमन मैन के पास हैं वो है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का। तो इससे निजात पाने के लिए भी आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हमारी पंचकर्म थेरेपीज में है शिरोधारा आती है, तो शिरोधारा अगर हम लेते हैं या पंचकर्म थेरेपीज हम अगर आयुर्वेदा में लेते हैं तो इससे जो है वो हम स्ट्रेस एंजाइटी से बहुत जल्दी जो है ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिन्हें हम रसायन औषधियाँ कहते हैं, जैसे अश्वगंधा है, शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, इन औषधियों का उपयोग करके भी हम अपने स्ट्रेस एंजाइटी को जो है वो बहुत हद तक जो है वो ओवरकम कर सकते हैं।
1: जी अब डॉक्टर आरती पठानिया, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आयुर्वेद में रोग होने से पहले ही स्वास्थ्य की रक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, तो इसे बहुत ही आसान से शब्दों में समझाइए।
0: जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, की स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, और आतुरस्य आतुर मतलब कि जो रोगी हो गया है उसके रोग का नाश करना। देखिए, हमारे शरीर में जब भी कोई रोग उत्पन्न होने लगता है तो वो एक दिन में उत्पन्न नहीं होता है। तो जब भी कोई रोग की उत्पत्ति होती है उससे पहले हमारा शरीर जो है वो हमें बताना शुरू कर देता है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी होने लगेगी तो आपका शरीर आपको बताएगा, आपको पेट में जलन होने लगेगी, आपको वॉमिटिंग का मन करेगा, है ना, जो बहुत सारी आपके पेट में दर्द होगा। तो ये कौन सी अवस्था होती है जब हम अपने रोग को पकड़ सकते हैं, इसी अवस्था में अगर हम अपने रोग को पकड़ ले और उसका सही इलाज करवाएं तो हम जो है वो रोग होने से पहले ही जो है वो हम रोग को रोक सकते हैं, और रोगी इंसान जो है वो रोगी बनेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हुई, और अगर रोग हो भी जाए, अगर वो टाइमली जो है वो पहुंचे, अगर चिकित्सीय परामर्श ले, तो उसका रोग जो है वो बहुत जल्दी जो है वो खत्म भी हो सकता है।
1: उसका रोग जो बीमारी से जूझ रहा है उसकी बीमारी को बहुत जल्दी
0: लिया जा सकता है। जी,
1: डॉक्टर आरती पठानिया, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज हर कोई अनिद्रा से जूझ रहा है, बहुत कम नींद आती है, तनाव हर किसी को है, और इसके साथ हम बात करें तो मानसिक थकान बहुत ज़्यादा है। ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो आयुर्वेद इन सारी बीमारियों से बचने के लिए कौन सी सलाह देता है?
0: जैसे आपने बात की कि अनिद्रा की, बहुत तो अनिद्रा के लिए तो आज के युग में सबसे पहले तो मैं, जो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जो हमारा सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव रहने लग गए हैं, और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के साथ क्या है, जो हम दूसरे लोगों का जो लाइफ देख रहे हैं शायद उसी तरह से हम भी जीना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। प्लस आजकल हर कोई जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव करना चाहता है, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, इसकी वजह से थकान भी है, मानसिक थकान भी है, डिप्रेशन एंजाइटी सबके लिए है। जैसे मैंने बताया कि शिरोधारा जो एक बहुत अच्छा एक हमारे पास पंचकर्म की एक थेरेपी है शिरोधारा, जिससे आप जो है वो इस तनाव को कम कर सकते हैं। प्लस आप साथ में क्या कर सकते हैं, योग और प्राणायाम, जो हमारा आसन्स हैं और हमारे प्राणायाम हैं, अगर आप नियमित रूप से अपनी जीवन शैली में अपने प्राणायाम और आसन्स को अगर आप अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करते हैं तो आप इस स्ट्रेस एंजाइटी से जो है निजात पा सकते हैं।
1: बेसिकली हद तक,
0: बहुत हद तक बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। बेसिकली देखिए, हमारे आसन्स और प्राणायाम करते क्या है, हमारे आसन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और जो हमारा प्राणायाम है, प्राणायाम में हम करते क्या है, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, सांस लेते हैं, और जब हम सांसों को होल्ड करते हैं तो उस टाइम पर क्या होते हैं, उस टाइम पर जो ऑक्सीजन है हम अपने ब्लड में और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ऐड करते हैं। जब हम और ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो करता क्या है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे ओज को जो है वो बढ़ाता है,
1: यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता
0: को बढ़ाता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को, प्राणायाम जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको काम करता है, शांत करता है, जिससे जो स्ट्रेस हॉर्मोन है वो भी जो है वो कम हो जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर पठानिया, अब हम अपनी बातों को यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं और आपकी पसंद का गीत आपके लिए और हमारी सभी श्रोताओं के लिए, सभी सखी सहेलियों के लिए।
2: मैंने

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर

0: 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: डॉक्टर आरती पठानिया कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपनी सभी सखी सहेलियों का भी इस कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत। और हम आज बात कर रहे हैं सखियों आयुर्वेद दिवस की। जी डॉक्टर पठानिया, अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम आगे आपसे पूछते हैं कि बात अगर हम बच्चों की करें, महिलाओं की करें और अपने बड़े बुजुर्गों की बात करें तो इनके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में क्या विशेष महत्व है?
7: जी, तो सबसे पहले अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में नेचुरली जो है, प्राकृतिक रूप से ही बच्चे जो होते हैं वो कफ प्रधान होते हैं, उनमें कफ की प्रधानता होती है। और अगर हम ये सीज़न देखें, जैसे अब मौसम में बदलाव आ रहा है तो बच्चों में जो है वो सर्दी, खांसी, पाचन संबंधी समस्याएं जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाती है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी लग जाती है। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि बच्चे जो है वो कफ प्रधान रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी माताएं हैं वो अपने बच्चों को हमेशा जो है वो ताज़ा खाना खिलाएं, हल्का खाना खिलाएं, ऐसा खाना खिलाएं जिससे उन बच्चों में जो है वो कफ की वृद्धि ना हो। जैसे बहुत ज़्यादा मीठा आजकल के बच्चे पसंद करते हैं, तो ये चीज़ों से माताएं जो हैं वो थोड़ा अवॉइड करें। बच्चों को मीठा भोजन देना, साथ ही बच्चों को बासी भोजन ना दें, अधिक मीठी चीज़ें, अधिक ठंडी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को ना दें। बच्चों को जो है आप तिल तेल का या बादाम की तेल का आप मालिश ज़रूर करें। और बच्चों में आप जो है वो ज़बरदस्ती बच्चों के साथ ना करें कुछ भी खिलाने के लिए। हर माता में ये आदत होती है कि बिल्कुल कि आप खा ले ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती बच्चे में ना करें क्योंकि वो बच्चा ज़बरदस्ती कभी खाएगा ही नहीं। साथ ही अभी बदलते मौसम की हम बात करें तो बच्चों में आप जो है वो च्यवनप्राश, जो हमारी एक रसायन औषधि है, जो वो रसायन औषधि आप च्यवनप्राश जो दे सकते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी हो जाती है। दूसरी बात करें अगर हम महिलाओं की, तो महिलाओं के जीवन में जो एक हार्मोनल बदलाव है, जो असंतुलन है, वो बहुत फेजी से गुजरता है। जैसे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म के ड्यूरिंग भी जो है वो उनमें हार्मोनल इंबैलेंस होता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होता है, और जब महावारी बंद हो जाती है जिसे हम मीनोपोज कहते हैं, उस ड्यूरिंग भी जो है वो हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना भोजन जो है वो हमेशा समय पर करें, टाइमली करें, ताज़ा और गर्म भोजन, भोजन करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या में आसन, प्राणायाम, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह अपने लिए, अगर आप ज्यादा समय नहीं निकाल सकती है तो 15 से 20 मिनट आप अपने शरीर के लिए जरूर दें, जिसमें आप आसन कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकती हैं, कुछ आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगी तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा रहेगा। समय समय पर जो है वो आप अपनी चिकित्सीय परामर्श जो है वो जरूर लें। और जहां तक बात जो मैंने बताया कि महिलाओं में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो हार्मोन इंबैलेंस की होती है, तो इसके लिए आप जैसे हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, दशमूला रिस्ट है, शतावरी है, लोधरासव है, इन सारी औषधियों का आप उपयोग जो है वो कर सकती हैं, जिससे आप जो है वो इस हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से जो आपको कष्ट होता है उससे आप ठीक रहें।
6: यानी डॉक्टर आरती पठानिया, साफ से शब्दों में कहें तो अगर वो आयुर्वेद की इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं
7: बिल्कुल,
6: तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी,
7: क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ में जो मैंने अभी औषधियां जैसे शतावरी बताया, दशमूला रिस्ट बताया, ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखती हैं, संतुलित रखती हैं,
6: मतलब
7: संतुलन बना के रखती हैं आपके हार्मोन्स को। और वृद्धावस्था की अगर हम बात करें तो वृद्धावस्था में जब वृद्ध व्यक्ति है 60 साल से ऊपर, तो नेचुरली क्या है, उनके शरीर में वात की वृद्धि है। जब वात की वृद्धि है तो उनके जोड़ों में दर्द रहेगी, संधियों में दर्द रहेगी, नींद नहीं आएगी, उसके बाद उनकी त्वचा में रूखापन रहेगा, उनकी याददाश्त कमजोर, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सब में ये समस्याएं देखी जाती हैं। वो क्यों देखी जाती हैं, क्योंकि इस आयु वर्ग में जो है वो वात दोष बढ़ जाता है, और वात दोष ये सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर में बदलाव लाता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो वृद्धावस्था में दूध का सेवन जरूर करें, गर्म दूध का सेवन करें, गोघृत का सेवन करें, जो हरी पत्तेदार

0: सब्जियां हैं उनका सूप का सेवन करें, सुपाच्य भोजन करें। जैसे मैंने पहले भी रसायन औषधियां मैंने बच्चों में बताई, च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, गिलोय है, इन चीजों का जो है वो सेवन करें। जो वात शामक हमारे तेल हैं, जैसे महानारायण तेल है, तिल तेल है, पंचगुण तेल है, धन्वंतर तेल है, इन तेलों की जो है वो शरीर में मालिश जो है वो जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपके वात पित्त कफ तीनों दोष बैलेंस रहते हैं और आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है।
1: जी डॉक्टर आरती पठानिया, अब हमारी सभी श्रोताओं को ये बताइए कि आजकल लोग इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और सोशल मीडिया पर देखकर ही स्वयं औषधियाँ लेना यानी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, यानी खुद के डॉक्टर खुद बनते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है?
0: ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए हर किसी की जो हर कोई व्यक्ति है उसकी अपनी प्रकृति है, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का, कोई कफ प्रकृति है। चाहे हम घरेलू नुस्खों की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, तो वो किसी भी बीमारी का इलाज हरगिज नहीं है, है ना। अगर कोई भी गंभीर बीमारी है आपकी, कोई पुरानी बीमारी है, तो उसके लिए आपको चिकित्सीय सलाह लेना ही आवश्यक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी को बुखार है, किसी को बुखार और बुखार आप घरेलू नुस्खे या सोशल मीडिया के जरिए आप अपना जो है वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, अपना इलाज खुद कर रहे हैं, तो देखिए अगर वो बुखार आपका 4-5 दिन लगातार लंबा चल रहा है, तो इसका मतलब कि वो नॉर्मल बुखार नहीं है। तो उसमें उस स्थिति में आपको जो है वो जो एक चिकित्सीय सलाह लेने की आवश्यकता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप प्रॉपर अपने टेस्ट वगैरह करवाइए जिससे आप पता चले। तो सिर्फ घरेलू नुस्खों और सोशल मीडिया पर ही जो है वो निर्भर रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है।
1: जी हाँ, तो सखियां हमारी बिल्कुल सुन रही होंगी कि अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है, और जब कभी भी घर में इस तरह की कोई स्थिति आती है, यानी बच्चे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या फिर हम स्वयं जब बीमार पड़ते हैं, तो सोशल मीडिया का, इंटरनेट का सहारा बिल्कुल भी ना लें, बल्कि सही समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जी तो डॉक्टर पठानिया, अब हमें आगे ये बताइए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की क्या सरल और वैज्ञानिक सलाह है, किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ सकती है?
0: जी देखिए, आयुर्वेद में जो पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को और इम्यूनिटी को जो है वो ओज कहा गया है, व्याधि क्षमत्व जो है वो इसे कहा गया है। और व्याधि जो क्षमत्व है या ओज है, वो कभी भी किसी भी दवा खाने से आप अपनी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकते,
1: नहीं बढ़ा सकते,
0: है ना। जो अगर हमारी दिनचर्या प्रॉपर है, हमारी ऋतुचर्या, सीजन देखिए, जैसे अभी सीजन चेंज हो रहा है, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अगर हम अपनी दिनचर्या को सर्दियों के हिसाब से रखेंगे, ऋतुचर्या, हम अपने भोजन को, अपने खान पान को इस ऋतु के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो सही खान पान, सही जीवन शैली, इन सब का सामूहिक परिणाम जो है वो हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाता है।
1: जैसे हमारी अच्छी आपने सलाह दी और बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया हमारी सभी सखी सहेलियों को।
0: जी जैसे दिनचर्या में देखिए, दिनचर्या में सबसे पहले तो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है कि जब आपका सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से 45 मिनट्स पहले, 45 मिनट पहले जो आपका टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्त। उस मुहूर्त में उठिए। उस मुहूर्त में उठने के बाद जो आपने सबसे पहले काम करना है, उसे बोला गया है उषापान। उषापान मतलब जो रात भर आपने तांबे के पात्र में जो पानी रखा है, उस पानी का आपने सबसे पहले उठ के उसका सेवन करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि तांबे के बारे में ऐसा बोला गया है आयुर्वेद में कि तांबा हमारे वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को जो है वो बैलेंस करता है। जब रात भर वो पानी तांबे के पात्र में है, तो वो पानी जो है उसकी जो तांबे की जो क्वालिटीज है वो उस पानी में आ गई, पानी में आ गई है, तो उस पानी का आप सेवन कीजिए, उषा पान कीजिए, उसके बाद मल त्याग कीजिए, स्नान कीजिए। ये बहुत सारी, अगर मैं बात करने लगूं दिनचर्या का, तो शायद हमारा एक वार्तालाप जो दिनचर्या पे हो सकती है। तो अगर हमारी दिनचर्या हम प्रॉपर रखते हैं, फिर ऋतुचर्या, जैसे अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो सर्दियों के मौसम में क्या है कि ठंडी हवाएं, अब हम देखेंगे कि ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी, तो जब हमारे शरीर में ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, तो हमारा शरीर क्या करता है, जो हमारे वातावरण में है, वो ही जो वातावरण में चेंजेस हैं, वही चेंजेस हमारे शरीर के अंदर आती है,
1: अंदर आते
0: तो
1: हैं,
0: उस चेंजेस के लिए हमारा शरीर क्या करता है, शरीर की गर्मी को अपने शरीर के अंदर रोकता है। जब शरीर के अंदर हमारी बॉडी गर्मी को रोकता है, अग्नि को रोकता है, तो हमारी जठराग्नि जो है वो बढ़ जाती है। जब जठराग्नि बढ़ जाती है, तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो सर्दियों के टाइम पे हमारी भूख बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, हम कोई भी, जैसे इस टाइम पे हम जो माँ की दाल की खिचड़ी खाते हैं, वो कितना गुरु भोजन है ना, भारी भोजन है, पर हमारी अग्नि

0: जो है सर्दियों में इतनी बलवान होती है कि हम किसी भी तरह के जो गुरु भोजन को हम आसानी से जो है वो पचा लेते
1: पचा
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और इस सीजन में हमें गुरु भोजन का सेवन करना चाहिए। अगर हम इस सीजन में गुरु भोजन का सेवन नहीं करेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो हमारी धातुओं का सेवन करने, जैसे हमारी धातु जो खाने के बाद फर्स्ट धातु बनती है जिसे हम रस बोलते हैं, तो जो हमारा शरीर जो है वो हमारी रस धातु को अटैक कर, जिसे हम आज की भाषा में मॉडर्न लैंग्वेज में ऑटो इम्यून बोलते हैं कि शरीर जो है वो अपने ही शरीर के विरुद्ध काम कर रहा है।
1: काम करना
0: वो
1: शुरू
0: क्यों
1: कर
0: करता
1: देता
0: है? वो इसलिए ही करता है क्योंकि जो हमारे शरीर को ऋतु के अकॉर्डिंग चाहिए, अगर हम उसे ऋतु के अकॉर्डिंग अपने शरीर को वैसा खान पान नहीं दे रहे हैं तो शरीर जो है वो अपने ही शरीर पे अटैक करेगा। तो इसी के लिए जो ऑटो इम्यून डिजीजेस है वो इसी वजह से हो रही है। तो व्याधि क्षमत्व जो है वो, साथ में मैंने बताया आप अपने जीवन शैली में योग और प्राणायाम का जरूर जो है वो अपने जीवन शैली में अपनाएं,
1: उसको शामिल
0: करें, जिससे आपका क्या नर्वस सिस्टम काम रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि कैसे जो प्राणायाम है, आसन है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो इस तरह से आप जो है बड़े ही सरल और आसान तरीके से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं,
1: खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। जी डॉक्टर आरती पठानिया, आप हमें ये बताइए खासकर हमारे युवाओं के लिए कि ऐसा कौन सा एक आयुर्वेदिक संदेश है जिसे वे अपनी दिनचर्या में बहुत ही आसानी से अपना सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे युवाओं के पास समय की कमी होती है।
0: जी हाँ, देखिए युवाओं के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि युवाओं में शायद आज शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक जो है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है। जैसे हम देखते हैं, वैसे हम सोशल मीडिया पे हम वीडियोस देखें, लड़ाई झगड़े की वीडियोस देखें, तो उसमें हम देखते हैं कि इनका मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका स्तर बहुत ही ज्यादा गिर गया। और इसका एक जो अगेन जो इसका मेन रीजन है वो हमारा सोशल मीडिया है। हम बहुत एक्टिव रह रहे हैं, जो आज का जनरेशन है वो बहुत एक्टिव है, तो इसकी तरफ जो हमारी युवाएं हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड को जो है वो छोड़े और अपनी अपना जो आपका पढ़ाई है उस पे पढ़ाई पे उस पर ध्यान दें। और उसके लिए भी जो अगेन मैंने जैसे बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे युवा हमें सुन रहे हैं तो वो कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा है कि उस टाइम पर जो हमारा वातावरण इतना शुद्ध होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो इतनी शुद्ध होती है कि वो डायरेक्ट आपके हीमोग्लोबिन में, रक्त में जाके मिलती है आपको एक नई ऊर्जा। तो उसमें क्या है, आप बहुत अच्छा अपना अध्ययन का काम, जो अपनी पढ़ाई का काम जो है वो सुबह उठ के करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद अपना खान पान, क्योंकि आज के युवा जो है जंक फूड में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जो पैकेज्ड फूड ज्यादा है, तो इस खाने से जो है वो दूर रहें, घर का सुपाच्य और हल्का भोजन करें और फास्ट फूड से दूर रहें, नशे से दूर रहे, मैं ये कहूंगी, है ना, आकाशवाणी के माध्यम से, कि आज हमारी सोसाइटी में जो है वो नशे का बहुत चलन हो गया है, जो युवा है वो नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि अपने आप को नशे से दूर रखें। योग प्राणायाम, देखिए नशा करता क्या, नशा जो है आपकी बॉडी में एक मतलब हार्मोन को, डोपामीन हार्मोन जो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी देता है, वो हार्मोन बढ़ाता है। और एक रिसर्च में ये पता चला है कि जो हमारा भ्रामरी प्राणायाम है, जिसे हम आंखें बंद करके भ्रामरी की आवाज निकालते हैं, अगर हम ये लगातार अपनी जीवन शैली में ये करें तो ये सेम चीज जो डोपामीन का लेवल जो नशा बढ़ाता है, सेम डोपामीन का लेवल हमारी भ्रामरी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाती है। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करें हर रोज तो ये ही मेरी सलाह है।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में हमें ये बताइए कि आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आपका कोई खास संदेश है जो आप देना चाहते हैं?
0: जी श्रोताओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद केवल बीमारियों का इलाज नहीं है बल्कि ये एक जीवन जीने की कला है। तो इस दिन हम सब ये संकल्प लें, हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपनी प्रकृति की तरफ लौटेंगे, अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाएंगे। पहला सुख निरोगी काया, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, और इस जो मंत्र है इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। हमारे ऋषियों की ये प्राचीन धरोहर आज पूरे विश्व को जो है वो स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही है, तो हम अपनी इस अनमोल परंपरा पर गर्व करें और आयुर्वेद के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर एक समृद्ध, ऊर्जावान और रोग मुक्त समाज का निर्माण करें। और अंत में जाते जाते एक बार फिर आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी डॉक्टर आरती पठानिया, आपने इतना कीमती समय हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं ने, हमारी सभी सखी सहेलियों ने डॉक्टर आरती पठानिया की ये बातचीत सुनी, इनके संदेश, इनकी बहुमूल्य जानकारी सुनी और हमें

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन निर्णय आपका होगा।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना। डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरे हुए रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और एआई सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लखमेन रिम्बुई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में सम्मिलित किया गया। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश

0: at the Asian Games in Nagoya. Mina lost 2-4 to Japan's Takuya Kurosaka in the semifinal today. He had assured India of its first ever Asian Games medal in soft tennis after defeating Sherwin Luguit of the Philippines 4-3 in a thrilling quarterfinal. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है?

भाई भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था, जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा, इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा। क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया। और भीगा भीगा है समा, ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है। मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफ़र काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफ़र कई तरह के हो सकते हैं, ज़िंदगी का सफ़र, नौकरी का सफ़र वगैरह। आज के गाने ज़िंदगी के सफ़र में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं ज़रूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज़ के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आँखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतज़ार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्यदेव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीज़ें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, ज़रा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्माया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 विविध भारती सुरीला सफर यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। 10वीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहती हैं कि हम अपने कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें ये बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबो कर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहाँ और आराम कहाँ, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद है?

जेलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज़ सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज़्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी। एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था। बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे ज़माने में जो चीज़ों के दाम थे वो देखकर आज चीज़ों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत क्या आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूँ, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूँ। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का ज़माना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही हैं कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है, यानी जो मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी ज़िंदगी का सुकून और हमारी ज़िंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में। इतना ना

सैयद महमूद की आवाज आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है और इस अनूठी आवाज से आप कितना प्यार करते हैं ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूँ। यहाँ ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता है जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज़्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज़ के बारे में ये श्रोता कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं। प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज़ में सुना करता था। जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था। शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफ़र का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूँ, इससे ज़्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूँ, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूँ। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज़्यादातर श्रोता जो

वो ज़रूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजैक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का, और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

ज़िंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये ज़रूर बताइएगा और अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के ज़रिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की ज़रूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं जो हमारी ज़िंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो ज़रूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक़ पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्ने को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक़ था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज़ भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम रात 12 बजे तक जारी रहें। विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई, आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना, न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतज़ार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफ़र कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए। क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के ज़माने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह हैं कि आप आज के ज़माने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, आज सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बताइए।

चंपा कली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनते रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रहे पंछी मेरे जीवन का टूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को ये बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताज़ा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के ज़माने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना ज़माना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि मेरी माँ चंपाकली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी

याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, और देखिए कि अब अकेलेपन का, उदासी का, टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको संबल दिया? जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं?

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया, तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूँ तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरी कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूँ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप 2 दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रही हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा, विश्वास वो चीज़ है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश

0: दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।
1: तेरे

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीज़ों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज़ जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगू करती मालूम होती है। इस

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटे दुख सुख अपने। जो पल आए हंसता आए लेकर रंग हजार, मेरा छोटा।

0: मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफ़र आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
2: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली 3 व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
3: Look at what has emerged from the BRICS.
4: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
3: ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशनल शेप।
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में 2 नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण

0: मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
5: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है।

0: इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
1: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
2: माय नेम इज रमेश।
3: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
2: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
1: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
6: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाश्वाणी समाचार।
4: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: विविध भारती से बोल रही हैं सदाबहार नगमे।
8: न झटको जुल्फ से पा

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन को 3 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: और योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी समेत सभी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आयुर्वेद समेत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा मुख्यधारा की सार्वजनिक चिकित्सा में उनका एकीकरण कर रही है। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित ये दोनों राष्ट्रीय मिशन देशभर में आयुष क्लिनिक, अस्पताल विभाग और सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं। ANM देश में आयुष स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और एकीकरण को गति दे रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों में आयुष स्वास्थ्य सेवा को शामिल करने के लिए ANM के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। NHM भी इसमें से कुछ पहल कदमियों का समर्थन कर रहा है। मौजूदा स्वास्थ्य क्लिनिकों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त आरोग्य केंद्रों में परिवर्तित कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है। ये NHM और ANM का साझा प्रयास है। NHM आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के वित्त पोषण और आयुष स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायता देता है। 19 सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार देश में 12,260 आयुष ANM काम कर रहे हैं। ANM का लक्ष्य 12,500 केंद्र स्थापित करने का है। NHM के माध्यम से इन आयुष ANM को अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ भी एक ही जगह स्थापित किया जा रहा है। NHM देश भर में 13,249 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सामान्य चिकित्सा देखभाल के साथ ही आयुष सेवाएं भी प्रदान करने में मदद करता है। फरवरी 2026 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक सामान्य सूचीबद्ध समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NAM के तहत देश भर में 17 आयुष कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 12 कॉलेजों का फोकस आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर है। आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का मकसद पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक बनाना और दवा विकास को बेहतर करना है। वर्ष 2026 की शुरुआत तक 11 विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी, जिनमें से 6 परियोजनाओं का फोकस 5 प्रमुख एकल आयुर्वेदिक वनस्पतियों के लिए सुरक्षा और अस्त्र से जुड़े दस्तावेज तैयार करने पर था। ये प्रयास बढ़ती अकादमिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2014-15 से 2025-26 के बीच 33 आयुर्वेद विशिष्ट प्रकाशन और 2001-02 से अब तक कुल 77 शोध प्रकाशन सामने आए हैं। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: सामयिक चर्चा में आज विषय था स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम

0: संजय, तुम्हारी आंखें अभी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धनवंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
1: जी,
0: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
1: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
0: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति की भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
1: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
0: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
1: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
0: अच्छा,
1: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की
0: गई है। कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में। और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
1: जी,
0: है ना।
1: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है, वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है। मतलब आज ये दूरियां नजदीकियां बन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी, मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
1: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा

0: है और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
1: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी,
1: है ना?
0: तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को, ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है, है ना?
0: जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गरम खाते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम यानी गरम गरम गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है आयुर्वेद में। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है, साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था। लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना?
0: और अब गीत सुन ले।
1: हाँ, नहीं तो हमारी श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली, कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला दिल और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने की बात
0: अभिव्यक्ति दी है। और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहाँ शब्द आवाज नहीं बन पाते, वहाँ संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले, ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है
0: जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है, तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में अपनाते
0: हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना, रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है, हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी,
0: साथ ही हल्दी का दूध
1: पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी त्वचा के लिए, आँखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें, है ना, या दुबले पतले इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खानपान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खानपान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर। तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
0: अच्छे होंगे,
1: तो शरीर
0: अच्छी होगी,
1: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहाँ आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी।
0: बाघ प्रिंट साड़ी?
1: हाँ।
0: क्या बात है,
1: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है, बाघ प्रिंट साड़ी। और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाघ प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
1: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है, और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
1: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
0: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
1: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है। कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
1: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है, काला रंग डिजाइन को उभारता है, और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
0: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाघ प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
1: और इसके प्रिंट देखे तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें इन जो चित्र बनाए जाते हैं।
0: और
1: इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
0: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाघ प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
1: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाघ प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है। और बाघ प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के

0: कौशल को सम्मान देना भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको मदद बढ़ाता है, है ना, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं उनके अनुभवों को।
0: जी, और बाग प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
1: और इसीलिए बाग प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

0: तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हो। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाघ प्रिंट के सूट और साड़ी लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है, तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि मैं बाघ प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चले
1: चले और ले लेते हैं।
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं और क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों

0: द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाघ नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाघ प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं, या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
0: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी, और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
1: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है, और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है, और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
0: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं, तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है। किसी काम के पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है। और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है आशा। दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
0: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं, तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाने का हौसला देती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
0: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी ये किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में, तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी बोरियत हो गई, उबाऊ हो गई, जिंदगी तो यही ठहर गई। लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
0: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है, तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
1: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनवाएंगे।

0: तो हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक नहीं लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दूकस की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरे में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा लगाएं। कपड़े वाले थाली पीठ को कपड़े सहित

0: पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थाली पीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर ले, ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, सादा नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा हिंग, राई बनाने की विधि, कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले, उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताज़ा दही ले, उसमें फेंट ले, फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में ले थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील ले, छीलने के बाद चक्कर जरूर देख ले, कड़वी तो नहीं है,
1: बहुत जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गरम करें, इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए, दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं, इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें, हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिख कर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस से कस ले है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माएं इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है, ताकि जो इडली भी खाई जाएगी और लौकी भी पेट में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिया में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को लौकी खिला कर ही छोड़ती है।
0: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
1: और अब गाना
0: बिल्कुल

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगु नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी श्याम की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और ख़ास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं, और जब आपसे मुखातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहाँ तक इनके काम की बात है तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा तो इनका चेहरा भी आपके सामने नज़र आ जाएगा, और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियोज़ में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबॉडी, और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी, फिल्म, वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे, मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है, तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीज़ों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है, और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूज़िक, कुछ गाने, तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का। और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पर बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का।
2: विविध भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम होता है कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए हैं सर कानों में वही आवाज
1: जी,
2: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
1: जी,
2: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम, तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि

0: मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज़ जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज़ कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम। ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज़ है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोलूँ, मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहाँ बैठकर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ये सफ़र जो यहाँ तक पहुँचा है
0: जी
1: आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा
0: बिल्कुल
1: भी आपने
0: बिल्कुल
1: कहा, वो चीज़ दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत, अगर करनी
0: जी जी
1: है तो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कहाँ जन्म हुआ आपका?
0: सर, मेरा जन्म हुआ गाज़ियाबाद में, जो यूपी में है, दिल्ली NCR में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
1: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? बचपना कहाँ बीता आपका?
0: बचपन सर गाज़ियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का और वहाँ की स्कूलों कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाज़ियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
1: किस विषय में किया आपने?
0: सर मैंने BCom किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने MA हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्ज़ाम दिए, सब कुछ किया। बट समहाउ क्या होता है ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती है, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
1: नहीं,
0: मैंने
1: लेकिन
0: किया।
1: इतिहास की आपने जब बात की है
0: जी
1: तो आपके जितने सीरियल्स हैं,
0: जी
1: जो धारावाहिक हैं,
0: जी
1: वो ऐतिहासिक ना भी कहें तो पौराणिक तो है
0: पौराणिक
1: ही,
0: तो है ही है।
1: पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो
0: हाँ हाँ
1: आपको पसंद था,
0: हाँ
1: आपने वो एग्ज़ाम के लिए तैयारियों के लिए
0: बिल्कुल
1: किया था
0: बिल्कुल
1: ज़रूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचा है वो।
0: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहते हैं ना, समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब
1: बिल्कुल
0: कुछ होता है किसी चीज़ के लिए, तो वही शायद ज़िंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फ़र्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना, उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में जो बना हुआ होता है, और जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े हैं, मतलब एक अपीरेंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज़ जो मुझे अभी फील हो रही है, ये चीज़ रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी, तो एक अलग ही युग में चले जाते हैं, एक अलग ही माहौल होता है वो, एक माइथो का
1: बिल्कुल
0: मतलब एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग ए नॉवल, पार्वती, जैसे मैंने अभी शिव शक्ति मैंने किया था, तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति ही अलग होती है सर, वो माइथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत, कभी चुभ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार AC नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहाँ खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहाँ निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता तो आप ओहो ये चुभ रहा है, जैसे
1: लेकिन
0: एक्शन
1: आपके
0: बना
1: मुस्कान जो है ईश्वरीय है, बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि
0: जी
1: सामाजिक जो है, फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन जो किरदार देखे नहीं
0: देखे
1: हैं,
0: ही नहीं है
1: माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो देखे हुए नहीं रहते,
0: देखो
1: तो उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है? क्या भाव आता है अगर आप शिवजी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिवजी की तरह फील करना, शिवजी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं
0: जी
1: उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या लगता है तब?
0: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना, वैसा ही फील आता है जब आप माइथो में एक करेक्टर
1: कॉस्ट्यूम्स
0: का, हाँ
1: पहनते हैं।
0: कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लक ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी विषयों की मेरी जानकारी भी है, अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते हो तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के।

0: क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, आपने फोटोग्राफ देखे होते हैं, आपको पता हाँ यार ऐसे ही होगा। लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस करेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक शब्द कह दूँ कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज, यू नो, हर चीज़ बदल जाती है, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूँ, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है। एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सके।
1: बिल्कुल,
0: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है, या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में, या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्टर्स उस कैरेक्टर को करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें, धूमिल ना हो छवि जो है।
1: ये जिम्मेदारी बड़ी होती है,
0: बहुत बहुत बड़ी।
1: और सामाजिक फिल्में जो हैं, या जो दूसरी कमर्शियल फिल्में आती हैं, या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपका मैनरिज्म भी काम करता है।
0: एग्जैक्टली,
1: आपका अपना अंदाज भी काम करता
0: अंदाज
1: है,
0: काम,
1: आप... और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास में वो छूट नहीं होती।
0: वो बिल्कुल नहीं होती सर, कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही। श्लोक जो है
1: जी,
0: अगर आपको संस्कृत में बोले तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल
0: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते, अलग अलग अंदाज में नहीं कह सकते।
0: जी जी, जैसे मेरा कैरेक्टर था भगवान वाल्मीकि का, राम सिया के लवकुश में, कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से, मेरे ही आश्रम से।
1: अच्छा।
0: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है
1: जी।
0: हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया। वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने पहला जो संस्कृत का श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और सर एक एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया। भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है।
1: क्या बात है, चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की
0: जी।
1: लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में, आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है
0: जी,
1: कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते और सुनवाते हैं
0: जी जी।
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका वो कौन सा था, वो हम बात में करेंगे
0: जी जी।
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
0: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है, वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल।
0: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस आपका था वो कहाँ पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई?
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना सके लेकिन गुनगुनाता ज़रूर है। एवरीबडी इज़ एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं, और सिंगर भी हम सभी हैं, और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएँ हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएँ हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन के आपको कहाँ जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप उसी राह पे चलते हैं
0: जी।
1: आप कई जगह इधर उधर भटकते हैं, लेकिन अंत में आप वहीं पहुँचते हैं जहाँ आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते हैं ना, कीड़ा जो उन्होंने डाला तो दिमाग में वो ही।
0: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहाँ से आ जाता है?
1: सर, एक कहावत है ना कि
0: रुचि जगाई,
1: कि मतलब हाँ, मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने मतलब
0: उस और प्रेरित
1: आपको चूज किया, तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा।
0: हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है ये कीड़ा,
1: तो अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे।
0: अभी तो नहीं है ना?
1: अभी भी कभी कभी। और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। तो काम ने करना, कुछ ना करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसअप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते हैं, तो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो हैं बलबीर मैम, वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़े खींचना पड़ा। तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट। देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा ये लाइन बोल के दिखाओ। हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है, और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, मरता क्या ना करता। रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते, पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग हैं जो ससुर का करेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो नहीं सकता है, तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का करेक्टर किया, जो दहेज का लालची होता है, पूरे बाल बाल सफ़ेद करके, मूछ वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई, मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी। वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सच में फिल्म देख रही हूँ तो मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ, बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे, पंडित जी तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा हूँ।
0: क्या बात।
1: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
0: तो सब अच्छा हुआ ना,
1: सब अच्छा ही हुआ। वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
0: हाँ ये बात सही है।
1: उन सबके प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, एक साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब, एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वॉज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था 2 हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वॉज अ कैमियो करेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कि कैमियो क्या होता है या मेन रोल क्या होता है या ये, तो ये तो अब पता लगा है। तो मेरे को जो प्रोडक्शन से कॉल आया, राशि प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। मैंने कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैंने कहा तो ठीक है मैं करूँगा। तो इसकी समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। वो 2-3 दिन का काम था शायद, वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया तो विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था, मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ विविध भारती में और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं ये सोचता था यार ये लोग कैसे काम करते हैं, तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है, तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी। आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। जब मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती, मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे, ये भी एक फेज़ था। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी, वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
0: हाँ मैं पूछूंगा ज़रूर आपसे लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को।
1: जी जी
0: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
1: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने, वो एक फैमिली की जो एक ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं वो एक सपने बुनते हैं, उस पर ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो एक ही रंग हो जाता है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें, तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: संजीव जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूँ जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे 4 ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूँ कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे 4 बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ्स 6 मंथ्स मतलब ठीक है। लेकिन वो जो सीरियल हुआ, जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर, स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अक्रू जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं।
0: अच्छा।
1: और विलन साइड में हम दो ही लोग थे, कंस और अक्रूर।
0: अच्छा।
1: और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे। बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए,
0: क्योंकि वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको?
1: नहीं सर, वो नेगेटिव नहीं था एक्चुअली, मुझे लगता तो नाम सोचेंगे अक्रूर तो जेट क्रूर एंड अक्रूर,
0: हाँ
1: क्रूर नहीं है,
0: क्रूर नहीं है।
1: हाँ, ये मुझे लगा कि
0: अक्रूर है वो।
1: हाँ, वो अक्रूर है।
0: अच्छा अच्छा
1: अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान, उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव करेक्टर है। लेकिन हाँ, शुरू में क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
0: जी जी
1: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है, मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज ऐसे, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि ठीक है मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीज़ें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो जब जाते हैं सर वहाँ पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते हैं यार ये इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक वहाँ पे दंगल टाइप है, द्वंद्व युद्ध है वहाँ पे, तो महाराज कंस ने आपको इन्वाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है चल, तो चलते हैं। उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। फिर वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं कि मैं ये हूँ, तो वहाँ पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं, उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको क्रूर वॉज अ रीजन कंस को मारने के, जो भगवान कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहाँ पे कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया।

0: दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया। कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं और वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है। तो इस कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर, वंडरफुल करेक्टर, एवरीथिंग वॉज गुड। मतलब उसमें सर मुझे इतना आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहाँ पर हिंदुज़म है जहाँ पर, वहाँ लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के भेजते थे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे। तो दैट वॉज अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
1: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है?
0: बिल्कुल सर।
1: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसा कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति हैं,
0: जी जी
1: तो आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है। तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुँचाती?
0: देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आपका जो काम है, जैसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं चुनते।
1: हम नहीं चुनते,
0: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था लेकिन कोई और कर रहा होता है, जैसे आप गब्बर का अगर एग्जाम्पल लें, गब्बर वॉज अ बिगेस्ट करेक्टर ऑफ द बॉलीवुड, उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया तो वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी लेकिन फिर किसी और ने किया। तो एक्चुअली रोल आपको, करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है और आपको जो मिलता है आप उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे।
1: इसके लिए खास बात यह है कि उस प्रक्रिया में बने रहना
0: है।
1: और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं,
0: क्योंकि काम ही आपको ढूंढता रहता है।
1: ये बात तो है। और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं, कभी आप गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
0: इट इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं।

0: बार फिर स्वागत करते हैं संजीव शर्मा जी आपका। बहुत अच्छी जो हैं लाइंस आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले, और फिर गीत भी हमने सुनवाया। क्या यही प्यार है? प्यार तो है। अच्छा ये बताइए, जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है, परिवार का आपने इस दरमियान बहुत बार जिक्र भी किया है अपनी बातचीत में कि आपको बहुत संभालते भी हैं और उनका भी सहयोग रहता है, तो बताइए अपने प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है।
1: देखिए, निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी, वंडरफुल फैमिली आई हैव। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी। और धर्म पत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा बेटा शौर्य द वंडरफुल गाय, यही चाहिए होता सर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाहा जीवन साथी मिले और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे हुए हों, और ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होता। यही एक अच्छी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
0: क्या बात है। तो जो आपके धर्म पत्नी है उनका नाम?
1: उनका नाम उषा शर्मा है और वर्तमान में वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो स्कूल है मुंबई में वहाँ पे वो कार्यरत हैं।
0: और बेटा क्या कर रहा है आपका?
1: सर मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है और वो अभी कॉलेजेस के सर्च कर रहा है, साइंस साइड उसने ली हुई है।
0: तो मम्मी तो उनके टीचर हैं तो गाइडेंस तो मिल ही जाएगा घर से। और इधर आपकी तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे?
1: नहीं सर, उनका यह है कि मैं रिसर्च में जाना है मुझे साइंस में।
0: आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते?
1: नहीं, मैं दबाव नहीं डालता। मेरा यह कहना है कि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए। लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए, मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाई चांस, भगवान न करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो, बाई चांस नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन आप ये बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूंगा या मैं कोई बिजनेस तो चला लूंगा।
0: अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने,

0: आज आपकी कौन सी इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है, कौन सी फिल्म आपको करनी है, किस तरह की फिल्म आपको करनी है?
1: सर
0: ऐसा
1: आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, वो ये कहता था, यार यू आर वेरी नेगेटिव आइज, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आइज, अलग ही लुक है आपका एक, मतलब शायद इसलिए कई बार मुझे ऐड मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये आंखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आंखें नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े बड़े सीरियल किए हैं ये मुझे कैसे मिलते? तो आई वॉज सरप्राइज कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ विजन ही हैज, नहीं नहीं यार ये करेक्टर तो आप ही करोगे। और सच मानिए उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने करेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर। सर मैं इतना रोया हूँ ना उस सीरियल में, इतना रोया हूँ, क्योंकि मैं एक बेटे का बाप,
0: हिमवान आपने
1: शिव शक्ति में मैंने
0: जी
1: किया, जिसमें पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं सती बनने के बाद, तो मेरी दो बेटियां गंगा और पार्वती, इतने आंसू बहाए ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे को बेटी नहीं है, मेरे एक बेटा है, तो इतने आंसू मैंने बहाए ना सर उसमें, मतलब वो जो फीलिंग थी एक डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की उस चीज़ को समझने में। मैं कहता हूँ सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉजिटिव करेक्टर देते हो, मेरा मन करता है मैं नेगेटिव करेक्टर निभाऊँ, तो पता नहीं उनका क्या विजन रहता है, बट जब जो भी वो करेक्टर देते हैं वो एक अलग ही लेवल पे जाता है।
0: लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो हैं अच्छे से निभा पाएंगे?
1: सर अब तो मैं सारे करेक्टर अच्छे से निभा सकता हूँ अब तो मुझे,
0: हाँ
1: क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर वो कुछ
0: क्या
1: भी कर सकता है, सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना,
0: बात,
1: है ना, गुस्सा दिलाना बहुत आसान है लेकिन किसी को रुला देना और किसी को हंसा देना ये
0: हंसा
1: सबसे
0: देना
1: मुश्किल काम है,
0: सबसे कठिन है।
1: और सबसे मुश्किल काम है आप फिर भी वो रुला सकते हैं, आप
0: नहीं
1: अपनी
0: आप
1: भावनाओं से किसी
0: हाँ
1: को इमोशनल कर सकते
0: कर
1: हैं,
0: सकते, किसी बात से कर
1: किसी
0: सकते
1: बात
0: हैं
1: कर सकते
0: जी
1: हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि
0: जी
1: सामने
0: जी
1: वाला इमोशन हो जाए, या किसी को आप हंसा सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है सर, ये हर एक किसी के बस की नहीं है। बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा एक मन है नेगेटिव करेक्टर करूँ, फिर ये है कि जो करूँ अच्छा करूँ।
0: नहीं वो
1: चलो
0: तो आप करेंगे ही।
1: जी
0: अच्छा ये मिर्ज़ापुर 3 जो है
1: जी जी
0: इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है?
1: मिर्ज़ापुर 3 सर एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली, किसी और चीज़ के लिए मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था उनकी कास्टिंग कर दें, तो उन्होंने मुझे बोला सर मिर्ज़ापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें करेक्टर है ब्रिज करके, तो आप करेंगे? मैं कहा आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह और मिर्ज़ापुर की जो करेक्टराइजेशन है मुझे लगता है कि मैं उसे फिट बैठ पाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप एक बना के भेजिए। तो हमने कहा ठीक है चलो, हमने पढ़ा वड़ा, अब मेरे साथ गुड लक क्या है सर, जो मेरी फैमिली है ना पूरी, बेटा वाइफ, ये लोग बड़े बहुत बड़े क्रिटिक हैं मेरे, तो ये लोग बताते हैं कि क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं किया, तो ये लोग व्यूअर्स की तरह देखते हैं। तो मैंने बनाया सर भारी मन से कि नहीं ठीक है चलो कर लेते हैं, बनाया भेजा, कुछ दिन बाद उनका जवाब आया सर कि ये बहुत अच्छा है और हम आपको लॉक कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं ये भी, सर 2 दिन का करेक्टर है, मैंने कहा चल 2 दिन ही कर लेते हैं, मिर्ज़ापुर का एक नाम हो जाएगा। मैं सर सेट पर पहुँचा, सब चीज़ हो गई, मैं सब सेट पर पहुँचा, मैंने किसी पूछा भाई डायरेक्टर साहब कौन से वाले हैं, तो दे वॉज अ चिल गाय, मतलब बाल बाल कोई हुए छोटे से, मतलब तो बड़े क्यूट से बड़े प्यारे से, मतलब हिज नेम इज मिस्टर गुरमीत सिंह, बोले सर ये है डायरेक्टर, जो मेरे को मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, गुरमीत जी बड़े स्टाइल से, बोले आई एम द डायरेक्टर, मतलब तो उन्होंने सर मुझे इतना कंफर्ट कर दिया ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूँ और मुझे एक्ट करना है। उसमें जो गोलू का करेक्टर कर रही हूँ वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे और मेरा पहला सीन था, मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्ज़ापुर पहले 2 सीज़न हो चुके हैं, तीसरे सीज़न में आप सक्सेसफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन, तो मैंने सर से पूछा, मैं कहा गुरमीत जी कैसे? बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको करेक्टर में जम रहा हो आप वैसे ही करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा। सर किया मैंने और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की, इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के, पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी, और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैं कहा ओके सर, गुमी सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा, बोले आगे क्या मतलब, मैंने कहा मतलब इट वॉज फॉर 2 डेज ना, बोले नहीं नहीं आपको किसने बताया, यही सुना था, बोले नहीं नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट हैं उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भैया अभी तो लखनऊ जाना है बनारस जाना है, तो मैंने कहा हाँ आई वॉज सरप्राइज, मैं कहा अरे ये कि
0: कंटिन्यूटी में है।
1: हाँ मतलब आपको किसने बोला 2 दिन गए तो आज तो बहुत काम है आगे, तो मैं एक डिफरेंट सोच में था, कह रही है ये कैसे हो गया, तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी 4-5 दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे, वो मुझे स्टोरी सुना रहा, मैं अपनी ही एक कल्पना में होंगे, अच्छा अरे यार भैया तो बढ़िया होगा, अच्छा हो जाए तो बनारस में लखनऊ में आता, ये तो गुड करेक्टर बनाना निमकाना, तो फिर मैंने बोला उनको सौरभ, मैंने कहा प्लीज मैं ना पार्ट 2 देख लूंगा भाई, दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट 2 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्टर कहाँ से उठा क्या करा है, और मैं वैनिटी में आके मतलब यार तो मजे आ गए, तो ये
0: काम करने में मजा आया कहने का
1: हाँ मतलब फिर
0: मतलब।
1: लगा यार इज अ करेक्टर बेसिकली, और करेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली, जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है, और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए इसमें, और वैसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मजा आ जाएगा, लुक बहुत

0: अच्छा दिया गया है, द गुड करेक्टर, 3 एपिसोड में मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी, शायद गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा, ऊपर
1: बिल्कुल
0: वाले ने चाहा
1: बनेगा,
0: तो
1: हम आपको शुभकामनाएं देते
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: और आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत।
0: हाँ, देखो द सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, द फिल्म डोर, बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि चाहे राहों में कितने कांटे हों, कितनी चीज़ आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया ना, आप वहाँ पहुँचोगे ज़रूर, बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है।
1: ये बात ये जीवन में जो है मायने रखती
0: ये
1: है।
0: मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम
1: फोकस
0: डूइंग,
1: करना है कि ये कर रहा
0: आई एम
1: हूं।
0: डूइंग, और ये मैं कर रहा हूँ, और ये मैं करूँगा, और ये ऐसा होगा, कि मन को अपलिफ्ट करती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: तो
0: हौसला कैसे रुके।

0: तो मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का, और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े
0: जी
1: किरदार
0: जी
1: किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं वो?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता है। हाँ मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना। उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज़ टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म ज़रूर करूँ, क्योंकि फिल्में ताउम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्म ही करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनी वे, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्टी की फिल्म थी, है बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत ज़्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरीज और वेशभूषा और जो म्यूज़िक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा। 1 वीक मेरा काम चला उसमें। मेरा नाम उसमें हजूरिया करके एक करेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्सन्स, उनको देख के काम करते। तो उसके बाद मुझे किसी के साथ काम करने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े एक मास्टर के साथ काम कर चुका था। चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। फिर मैंने एक फिल्म की सर, वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज़, अक्षय कुमार जी और दिलजीत दोसांझ जी का। एक के लिए ऑडिशन दिया था, एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या, शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। मैं पहुंचा सर, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दिलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर, किया सर मैंने वो फर्स्ट डे अक्षय कुमार जी। मैं तो उन्हें देखते रह गया, क्योंकि मैंने कभी अक्षय कुमार जी को देखा ही नहीं था। ही सेट किया, आओ भाजी अच्छा लगा उन्हें। मैं कहा सर मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं अक्षय पाजी के सामने खड़ा हूँ। तो एनी आओ रिहर्सल वगैरह हुई, उनका मजाक अंदाज है जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा अलग सा लगा। मैं कहा यार मेरा मतलब हंसी उड़ा दी, मैं कहा कल पता नहीं कैसे शूट होगा। मुझे पता था उनका बिंदास अंदाज है। तो मैं घर गया, मैं सुबह जब रेडी हो रहा था आने के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा यार वो कल पाजी ने ना थोड़ा ज़्यादा ही मतलब मुझे लगा कि मेरा मजाक से उड़ाया। शी सेड कि ठीक है अगर इतना ही ईगो है तो फिर घर बैठ जाओ, डोंट गो फॉर शूट, अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, मैं कहा ठीक है जो होगा करेंगे। गया मैं सर, नेक्स्ट डे अक्षय सर का जो बिहेवियर था ना वो एकदम अलग ही था। हाँ भाजी क्या हाल है, और आओ शूट करते हैं, सब क्लियर है ना। मैं हाँ जी क्लियर है। तो वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे लगा नहीं यार वो एक कंफर्ट देने का एक उनका एक तरीका है
1: तरीका
0: जो
1: है।
0: उन्होंने किया मुझे रिहर्सल के दौरान। और मुझे वियर्ड जरूर लगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसका इंपैक्ट आया ना सर, सब मजाक है बिंदा एकदम काम करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो। और सर वो सीन मैंने किया, बड़ा अच्छा सीन था वो। मैं जब सिनेमा में देखने गया उसमें, तो लोग उस पर हंसे उस सीन पे। तो मुझे लगा नहीं यार आई रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, आप उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फिल्म की थैंक गॉड, तो उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कुलप्रीत सिंह के बीच में करेक्टर है। लगा ही नहीं कि मैं मतलब कितने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, कि मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं सर वो।
1: लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं।
0: बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं। एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज़ को अच्छी बनाना, वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए, और किसी का पता नहीं कौन कब कहाँ पहुंच जाए।
1: आपके पास भी अनुभव काफी है, आप भी इन बातों को अनुसरण करेंगे, हम सोचते हैं
0: बिल्कुल सर, मैं आज भी करता हूँ, मैं
1: सर
0: हमेशा करता हूँ।
1: और करते रहेंगे आप,
0: हाँ नहीं
1: और
0: नहीं
1: अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है,
0: बिल्कुल
1: और बेहतर रूप में अलग अलग स्क्रीन्स पर, ओटीटी का हो, टेलीविज़न का हो या फिल्म का हो,
0: जी
1: हम आपको देख पाएंगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएं मिलें, ऐसी कामना भी करता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, शेयर की हैं। बहुत बहुत
0: अब
1: धन्यवाद।
0: मैं एक छोटी सी बात बोल दूं
1: जी ज़रूर।
0: कि जितनी बातें आपने की हैं, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारी बातें श्याम जी की सुन लें और उसे अप्लाई कर दें।
1: तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल एक बात आपकी और सुन लेते हैं, एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं,
0: जी
1: और इसी के साथ हम

0: आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।
1: जी सर, दंगल सॉन्ग कि माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल, जिसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू डू।

0: इसी के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम आपको तयशुदा कार्यक्रम नहीं सुनवा पाए, इस बात का हमें खेद है।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। गुजरात के वडोदरा में एक समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
3: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
2: राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से नई तकनीक

इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क

0: अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। आयोग ने हाल ही में बिहार, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का प्रभारी और जमयंत सेरिंग नामग्याल और तथा दर्शना बेन जरदोश को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार के स्वास्थ्य के करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक सींग वाले गैंडे के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षकों में से एक है और इनकी आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत की संरक्षण यात्रा पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में गैंडों की कहानी इसकी जबरदस्त वापसी की कहानी है। एशिया खेलों में रोशी बिना देवी नावरम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंगथियास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा की माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब बना हुआ है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India will become a developed nation even before 2047 through the efforts of the youth. Addressing the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda in Vadodara today, she said that education becomes meaningful only when it is put to use for the nation and society. The president also appreciated the increasing participation of women in various fields, including education.
2: मैंने देखा कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो देश के अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का शुभ संकेत है कि हमारे देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: The Election Commission has said that all decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including a special intensive revision, in recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution and are integral to the decision-making process. External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated in the India-UAE-France trilateral on the sidelines of the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. The three ministers reviewed progress in trilateral cooperation across agreed areas of mutual interest, including space, energy, artificial intelligence, and culture and heritage. The

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है। एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझाया है।

0: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
1: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जाँच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी भजन।

अभी आप सुन रही थी भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

युवा दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। दोस्तों, आज है बुधवार और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स स्पीच की। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे और आज के दिन हम ये लेकर आते हैं कि खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें, कुछ न्यूज़ अपडेट्स। और आज का जो युवा है वो खेल जगत से जुड़ा हुआ है और हर युवा का कोई ना कोई सपना तो ज़रूर होता है कि जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ आगे बढ़ें। उनका कोई ना कोई लक्ष्य रहता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो मेहनत और लगन से भी काम करते हैं। तो कोई युवा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और हमारे बहुत से युवा हैं जिनका खेलों की तरफ रुख जो है वो बिल्कुल है और वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जो है वो खेलों के क्षेत्र में आगे

0: बढ़ रहे हैं और अपना देश का नाम जो है वो भी रोशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आज हम खेल जगत की छोटी बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे और एशियन गेम्स 2026 से लेकर मैदान की हर वो हलचल जो हर खेल प्रेमी के दिल को धड़का देती है, तो फिर देरी किस बात की है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को। आज के इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूनम, और सबसे पहले हम आज बात करेंगे उस खेल की जो हमारे देश में सिर्फ खेल नहीं है, इबादत की तरह है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। तो एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने बांग्लादेश को 114 रनों से करारी शिकस्त देकर जो है वो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, और इस मुकाबले की स्टार रही हैं तूफानी ओपनर शेफाली वर्मा, जिन्होंने मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करते हुए शानदार शतक जो था वो जड़ा और इतिहास भी रच दिया है। और साथ ही वहीं पर उपकप्तान स्मृति मंधावा ने बेहतरीन रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिए हैं। और साथ ही बात करें तो भारतीय महिला टीम अब जो है वो गोल्ड मेडल सिर्फ एक कदम उनकी दूरी पर है, और दूसरी तरफ पुरुष क्रिकेट टीम भी जो है उसमें शरीस अय्यर की कप्तानी में अपने खिताब को जो डिफेंड करने के लिए कमर कस चुके हैं। और तो ऑल द बेस्ट इस टीम इंडिया को। और दोस्तों क्रिकेट के बाद आगे हम रुख करेंगे राष्ट्रीय खेल हॉकी की तरफ, लेकिन कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और एक गीत प्यारा सा सुनते हैं और उसके बाद जल्द लौटेंगे।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

0: तो दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। और आज के युवा मंच कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स बीट्स की, और जिसमें आगे बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में, जहां से आज गोल की ऐसी बरसात हुई कि विरोधी टीम जो है वो पानी मांगती हुई नजर आई। और एशियन गेम्स के अपने पहले ही पूल स्टेज मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 के विशाल अंतर से रौंद डाला है। और भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने मैदान पर गदर मचाते हुए 4 शानदार गोल दागे, और उनके अलावा सुखजीत सिंह और मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी इंडोनेशियाई डिफेंस की धज्जियाँ उड़ा दी। और वहीं महिलाओं की टीम ने भी जो है वो 19-0 से मात देकर टूर्नामेंट का में जो है वो आग उगल दी है। और साथ ही इस बार हमारे ड्रैग फ्लिकर्स और फॉरवर्डर्स का इरादा जो सीधा पेरिस के बाद लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट कटाने का है। तो दोस्तों, बातों का सफ़र तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद फिर लौटते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
2: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: सिर्फ इसे नहीं, सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
3: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: जी दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ, जहां शटल बॉक्स की रफ्तार से विरोधी परस्त हो रहे हैं। और विमेन टीम के पहले दौर में जो है भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से हुआ था, और वहां पर भारत की स्टार शटलर और 2 बार जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं पीवी संधु ने अपने पहले मुकाबले में कजाकिस्तान की जो कामिला है उसको महज 21-7, 21-9 से धूल चटा दी। और सिंधु की इस आक्रामक जीत के बाद युवा सनसनी उन्नति हुड्डा ने भी अपने इस मैच में 21-7 और 21-10 से जीत कर भारत को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी है। और साथ ही कोर्ट से ये भी खबरें आ रही हैं कि हमारे बैडमिंटन ब्रिगेड इस बार जो है वो मेडल टैली के लिए बड़ा योगदान देने वाली है। और दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब माटी के लालों की, यानी कि कुश्ती की। एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी

में भारतीय दल के ध्वज वाहक रहे हैं स्टार पहलवान पवन सहरावत, और जिन्होंने यहां पर तिरंगा थामा और उन्होंने पूरे देश का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है। हालांकि कुश्ती के मुकाबले 30 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन अखाड़े से आ रही खबरें गर्म हैं कि ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत जो है वो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के लिए जो कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं और 2 अक्टूबर को अपने दांव पेच दिखाने मैदान में उतरेंगे, और इस बार मैट पर हमारे पहलवान सोने के पदकों की झड़ी लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे और भी अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले, मैं तो पहले भवरे जैसे अरे? पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्क
0: कम ऑन रिया
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या दिल में तुम्हारा नाम है,
0: वाओ
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए,
0: आई एम नॉट लिसनिंग टू यू,
1: दिन में नजरें इनकी इधर उधर,
0: आई एम नॉट लिसनिंग,
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच और हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स बीट्स की और आज की अगली स्पोर्ट्स के बारे में जो न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हाल ही में 22 सितंबर 2026 को जापान के सानो शहर में एक ऐतिहासिक पुरुष क्रिकेट मैच खेला गया और ये मैच भारत और जापान की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच पहला आधिकारिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और जो ये मुकाबला है ये मैच भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सुजुकी कप के तहत आयोजित किया गया था। भारी बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण मैच को घटाकर 5-5 का जो ओवर है वो कर दिया गया था, लेकिन भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 32 रन जो है बनाए और जवाब में कड़ी टक्कर देते हुए जापान की टीम ने 5 ओवर में 30 रन जो है वो बनाए और उसी के साथ भारत ने ये रोमांचक मैच जो है वो 2 रन से जीत लिया।

और युवा साथियों, अब खेल जगत की कुछ और अपडेट्स के साथ बात करेंगे फुटबॉल की। तो फुटबॉल में भारतीय टीमें जल्द ही मैदान पर अपनी चुनौती पेश करेंगी। और वहीं आज शूटिंग रेंज में भारत के लिए पहले मेडल जो है वो भी आया है। और 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम इवेंट में सोनम उत्तम भास्कर ने इलोवेल और बलारिनवल को, बिदारसा की तिकड़ी ने जो है वो सितंबर मेडल को जीत कर भारत का खाता खोल दिया है। और इसी के साथ इलावेलिन ने इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी एक और सिल्वर पर निशाना साधा है।

और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट की शुरुआत जो है वो कल यानी 24 सितंबर 2026 को की जाएगी और जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले 24 सितंबर 2026 से शुरू हो रहे हैं और पहला मैच जो है वो 24 सितंबर को ग्रुप स्टेज का जापान और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सीधे 28 सितंबर को दूसरे क्वार्टर फाइनल में खेलने उतरेगी और आगामी मैच की अगर बात करें तो

वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो भारत के दौरे पर आ रही है और दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 27 सितंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।

तो दोस्तों, एशियन गेम्स के इस शुरुआती दौर में भारत के बेटे और बेटियां पूरे जोश में हैं और मेडल टैली में इस देश का मान जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो खेल जगत की जो आज की खबरें हैं उनमें बस इतना ही। स्पोर्ट्स बीट कार्यक्रम में अगले बुधवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और सुनते रहिए FM धर्मशाला।

युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रही थी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ, किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां आप सुनेंगे 6:30 पर, और आज का विषय रहेगा स्वच्छ भारत अभियान। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी, जिसमें बुजुर्गों का करे सम्मान, इस विषय पर आज बातचीत की जाएगी। रात्रि 8:00 एशियाई खेल 2026 की डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर सुनिएगा देशगान, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें गीतकार हसरत जयपुरी के कुछ लिखे हुए गीत आपको सुनवाएंगे। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत सुनिएगा रात्रि 10:00। सभा के अंत में 10:30 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत, कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:58 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को सप्ताह में दो बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इन बच्चों को मिड डे मील के साथ बुधवार और शुक्रवार को उनकी या उनके अभिभावकों की पसंद के अनुसार उबला हुआ अंडा या ताजे फल उपलब्ध करवाए जाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल की सफलता के लिए प्रभावी निगरानी, सामुदायिक सहभागिता और खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों के साथ किए गए हर वायदे को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया जा रहा है। उन्होंने आज सिरमौर जिले में रेणुका क्षेत्र के मैना में एक कार्यक्रम में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वायदा पूरा किया है। अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य परिवहन निगम के लगभग 11,000 कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों को सफलता मिली है और बीबीएमबी करार मामले में भी प्रदेश के हितों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अनेक मंत्री मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और जिला योजना विकास

0: राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने आयुर्वेद पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। गोमा ने बताया कि राज्य सरकार ने जिला स्तर पर पंचकर्म वेलनेस केंद्र स्थापित किए हैं।
1: लोगों का आकर्षण बढ़ा है और मैं समझता हूँ कि जब कोरोना हुआ था तो लोगों ने काफी ज्यादा आकर्षण इसके ऊपर दिया था आयुष विभाग ने, और हम देखते हैं कि कई लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एलोपैथी से छोड़ के जो है हमारे पास आयुर्वेदा में आते हैं, चाहे वो पंचकर्मा करवाते हैं या कोई और मसाज लेते हैं जिससे कि उनकी बीमारियों में जो है वो राहत मिली है। पंचकर्मा को बढ़ाने के लिए हमने वेलनेस पंचकर्मा जो है वो स्टार्टअप किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने शुरू किया है और साथ में हमने अभी 216 जो है हमारे टेक्नीशियन जो है हमने इस साल जो है वो उनका कोर्स भी जो है वो चालू कर दिया।
0: सेवा ही संकल्प अभियान के तहत आयुर्वेद दिवस पर भाजपा द्वारा आज सोलन में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मरीजों की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। भाजपा समस्त प्रकोष्ठ के संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि सेवा ही संकल्प अभियान के तहत पार्टी द्वारा सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
2: आयुर्वेद दिवस इस रूप में मनाया क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को हम सब ने मनाया और भारतीय जनता पार्टी ने 17 अक्टूबर तक देश में विभिन्न सेवा के काम, संकल्प के काम और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के काम पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। यानी कि कुल मिलाकर एक महीने तक इस तरह के सारे आयोजन सेवा कार्य देश भर में चलेंगे। उसी कड़ी में आज का ये फ्री जांच का जो शिविर रखा है ये भी उसी को समर्पित है।
0: वामन द्वादशी के मौके पर आज नाहन में शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर सारा शहर भगवान वामन के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में शहर के प्रमुख 9 मंदिरों से देव पालकियां पहुंची। नाहन के तहसीलदार उपेंद्र तोमर ने बताया कि सदियों से वामन द्वादशी पर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ।

आज के इन खूबसूरत गीतों के सफ़र में मैं हूं आपकी हम सफ़र आपके साथ पूनम। और कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनोखा रिश्ता फिल्म से और जिसे गाया है आशा भोंसले ने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी
2: कार्यक्रम सुरमई सांझ का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रॉकी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में गाए दूर का राही फिल्म के गीत के साथ आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: कार्यक्रम औजां ग्राइंदियां लेई करी हाजिर हन टियाले पर मैं ग्राम सेवक कने मेरे कने हन
1: गुलाबो जी दिखा
0: जी।
1: ग्राम सेवक जी मतिया मतिया दिन बाद आंदे ना तां हां ना भुली आंदे
0: इक दिन नहीं ना तां मैं भुलिया नहीं तुहाड़ा पर मैं तुहाड़े मुंहे ते सुनना चाहदा भी तुहां भी अपने किसान भाई भैणा जो राम राम करी दिया कने भाई मैं मेरी तरफा ते भी सारे जो श्रोतियां जो किसान बागवान भाई भैणा जो राम राम
1: जी बिल्कुल राम राम अहां दुनी दी तरफा ते राम राम कने नमस्कार दिखा किसान साथियों अहां टियाले पर आए बैठन कने दिखा तां जो पता है कार्यक्रम है हाड़ा मौजां ग्राइंदियां कने दिखा कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां विच तां जो पता ही है कि अहां पिटारू भरी करी जानकारियां दा इस दे सोगी लोक गीत कने सोगी कुछ एक महत्वपूर्ण स्नेह जड़े से अहां कार्यक्रम दे विच जड़े से सुनांदे न कने आपू भी सुनदे न है ना
0: जी जी बिल्कुल तुहां ठीक गलाया कने दिखा जी सब ते पहले तो साड़ी यही कोशिश रहंदी कि अहां कोई बढ़िया दी जानकारी जड़ी असें अपने किसान बागवान भाई भैणा तक पहुंचाई दी है ना
1: जी जी
0: तां दिखा अज दी जड़ी जानकारी असें है स्वच्छ भारत मिशन दे बारे च यानी कि स्वच्छता दे बारे च
1: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी दिखा साफ सफाई जड़ी ऐसा अहां सबनी दा जड़ा ऐसा फर्ज एक बनता है कि अहां अपने सारे ते पहले अपने घरां ते जड़ा ऐसा साफ सफाई जो जड़ा ऐसा शुरू करन इस दे विच अपना पूरा सहयोग अपना पूरा योगदान जड़ा ऐसा अपनी तरफा ते हर एक माणू जड़ा ऐसा दे है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल तुम ठीक गलाया कने दिखा स्वच्छ भारत मिशन जिहड़ा ऐसा भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 जो शुरू किया गया था और ये एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है जिसका उद्देश्य देश जो खुले च शौच ते मुक्त बनाना है और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन च सुधार करना है
1: जी बिल्कुल इस दे सोगी देश जो स्वच्छ करना है साफ सुथरा रखने दे सोगी सोगी जी तुहां गलाया है घर घर शौचालय दा निर्माण करने उसका उपयोग जड़ा सा बढ़ाना है कूड़े कचरे जो सही तरीके ने निपटारा इसका करना है कने अहां लोगां दे विच जड़ा सा स्वच्छता दे प्रति जागरूकता पैदा करना जड़ा सा भी हड़ा एक फर्ज बनता है ना जे तुहां जो कोई गल पता नहीं है तो तुहां होर ना जो कोई गल पता लगदी है तो तुहां होर ना जो भी तसा गल्ला जो तुहां दसा कने जागरूक करा हर एक ही जो ताई जड़ा हड़ा देश प्रदेश जड़ा सा स्वच्छ कने स्वस्थ बनना है
0: बिल्कुल कने देखा गुलाबो जी सब ते बड़ी गल तो यह है कि जालू ये स्वच्छता अभियान चल रहा था तालू साढ़े भारत देश च बड़े घट लोग जड़े सै शौचालय का जड़ा सै उपयोग करते थे लेकिन अज की तारीख अगर अहां देखन तो लगभग 100% तक दे क्षेत्र च जड़ा सै हर घर च जड़ा सै हाँ शौचालय बने हैं ये गलाई सकते हैं ना
1: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी कर दिखा स्वच्छता जड़ा सै केवल सरकार दी जिम्मेवारी नहीं है जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर एक नागरिक जड़ा सै तिसदा कर्तव्य बनता है कि तिसदी तरफ ते पूरा सहयोग पूरा योगदान जड़ा सै मिले कि हाँ जो जड़ा कूड़ा है हमेशा कूड़ेदान दे विच ही पाना है कने अपने घरां दे विच या फिर स्कूलां विच या फिर अपने अखे वखे दा जड़ा तुहाड़ा क्षेत्र हुंदा है तित्थों तुहां साफ सफाई दा ध्यान रखना है कने अपने घरां दे विच जड़े तुहाड़े बच्चे हुंदे ने छोटे बच्चे ते ना जो सिखाना है कि हां जो कूड़े दा निपटान कियां करना है ना
0: जी बिल्कुल तुहां ठीक गला दे कने दिखा जी स्वच्छता जिहड़ी है ये बड़ी जरूरी है चाहे अहां अपने गाँव की करन या अपने घर गाँव की गल करन या अपने पंचायत की गल करन अज हर एक छोटे तो लेके बड़े बजुर्गों तक जड़ा सा हर नागरिक जड़ा सा जागरूक है और सारे जानते हैं कि भाई स्वच्छता का जड़ा ऐसा क्या महत्व है
1: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी जे अहाँ छोटिया छोटिया गलों का ध्यान रखते हैं तो अहाँ बड़े नुकसान से कई बार बची सकते हैं घर या फिर थोड़े अखे बखे पानी ना रुकया हो जो बीमारियों से जड़ा सा बचाव हो जाता है कहीं दिखा जलू पानी हाड़िया नालियाँ साफ नहीं होंगे पानी रुकया हों तो कई प्रकार की बीमारियों कने मक्खी मच्छर जड़ा सा पनपदा है कने तिसने हाँ जो बीमारियां होंगे
0: बिल्कुल तो हाँ ठीक गला दे तां दिखा गलबात साड़ी इसी तरह अहां जारी रखनी है गां भी लेकिन एक छोटा दिया संदेश जड़ा ऐसे अहां अपने कार्यक्रम च शामिल करना है कने फिर ही सुनना एक प्यारा दिया
1: लोकगीत
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी गुलाबो जी, दिखा कितना बांका लोकगीत था, और लोकगीत के बाद एक बारी फिर यहाँ जानकारी दी तरफ चलना है। कने दिखा जानकारी च अज अहाँ गल करा देना स्वच्छता अभियान दे बारे च, है ना?
2: जी बिल्कुल।
1: और स्वच्छता अभियान जड़ा ऐसे सारे अज जागरूक हो चुके हैं, चाहे ऐसे बच्चा है, बुढ़ा है, बुजुर्ग है ना, महिला है, मर्द जो भी है, सारे जागरूक हैं। कने सारे अपने घरे का जड़ा कूड़ा है से अलग अलग गीला कूड़ा कने सूखा कूड़ा जड़ा से अलग अलग रखा कर दे, कने तिसदा जड़ा से निपटान करा करते हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: और साढ़े अगर हाँ गाँव च गल करिए ता सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ करता है ना, और बड़ी सारी जड़ी ऐसे मतलब गलबात है कि स्वच्छता जड़ी ऐसे आज एक बड़ी बड़ी जड़ी ऐसे गल सारे वास्ते बनी गई।
2: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, देखा सफाई अहाँ इक्की दा जड़ा ऐसा कम नहीं है, अहाँ सब नहीं मिली जुली करी अहाँ सफाई दा ध्यान रखते हैं ता हाड़ा जड़ा है पर्यावरण है सब भी साफ सुथरा रहना है। कने जियां कि बोलते कि बरखा नहीं होंदी टेमे टेमे दी तो ये नहीं हो करता था, कुछ ना कुछ हालात ऐसे बनी चुके हो कि गंदगी जड़ी ऐसा चौनी पखे फैलती है ता हाड़ा पर्यावरण दूषित हो जाता है, इस कारण कने बीमारियां भी फैलने का डर रहता है। हाँ जो थोड़े ते शुरू करना गलाने का मतलब कि अपने अपने घर ते शुरू करना है कि अहाँ अपने अपने घर के बच्चों जो सिखाने कने आपू भी ऐसे ऐसे काम करने कि जिसने कि हाड़े अखे बखे सफाई रही सके। कने इस सोगी ही खेतों के भी अहाँ कई बारी कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कने तह तू फेंकी दे तो फिर इसने नुकसान भी बड़ा हो जाता। हाँ जो कई बार हाड़ा पशु होंगे या फिर बच्चे होंगे घर तिना जो इस इन गलों का नुकसान रहता है, कई बार जहरीली चीज़ कोई होंगी है पैकेट होंगे है तो अहाँ इसका निपटान ना करी करी तो तू फेंकते तो पानी भी गंदा होंगे हाड़ा कने हाड़ी जड़ी जमीन ऐसे भी गंदी होंगी है कने हाँ जो भी नुकसान जड़ा सह हो सकता है। इस करे करी हाँ जो इन छोटिया छोटिया गलों का भी ध्यान रखना है ना।
1: बिल्कुल। कने दिखा जी कोई भी चीज़ ऐसा है पानी तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए है ना।
2: जी बिल्कुल।
1: इसका जरा ऐसा कुछ ही अलग तो जगह बनाई तिथु कूड़े का निपटान करना है अहाँ, या तो फिर कोई खड्डे च इसका जरा ऐसे अहाँ तिशु लगाई सकते दबाई सकते या तो अहाँ तिशु जलाई सकते।
2: जी बिल्कुल।
1: कूड़े का यह निपटान हो गया कहने बाकी साफ सफाई महाराज अपने अपने घरे के अखे बखे जरा ऐसा जरूरी है ना।
2: जी बिल्कुल।
1: जरा हूँ देखा बरसाती बड़ा भरी घा जरा ऐसा है घरे के आस पास नालियाँ च या फिर अंगने के आस पास जरा ऐसा है ना उगया हों तो सभी जरा ऐसा साफ सफाई करनी है कने अपने आस पास का जो माहौल है सह साफ सुथरा रखना है।
2: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, दिखा टाइम ही ऐसा लग गया इस वक्त दिखा हाड़े जड़े ग्रामवासी हैं तिना वास्ते बिल्कुल ऐसा टाइम लग गया है कि वही तिने जो बिल्कुल बोलते जो खाने जो भी टाइम जड़ा सा इस वेले नहीं लगता है कहे जे दिखा चौनी पासे जड़ा सा कम शुरू हो जाता है कि वखे हाँ कासणियां दे विच घा वढ़ना दा टाइम जड़ा सा लग गया है, दूए वखे 12 ते 15 या फिर 20 दिनों च जड़ी ऐसा हरी मुख्य फसल धान की फसल जड़ी ऐसा पकने जो तैयार है ना, तो सारे कम जड़े से किट्ठे पे आंदे इस दे सौगी ही जी बरसात चुकदी है ता अहां सब्जियां भी लानियां होंदियां ने ता सारे कम किट्ठे पौंदे ने, लेकिन हाँ जो ध्यान रखना है कि हूँ तो हाँ सब्जी जी लानी है मूली हो गया शलगम मटर या फिर पालक तो हाँ लाना है तो भी जड़ा सै अहाँ जड़ा सै उपचारित करी करी ही लाना है कने अपने क्षेत्र के हिसाबे नहीं लाना है ना।
1: जी बिल्कुल। तो गुलाबो जी थोड़ी गलों से थोड़ा जहा हाँ टोक टकाई करनी है कने एक प्यारा जहा लोकगीत जरा ऐसा सुनने मन करा दा है ना।
2: जी बिल्कुल।
1: सुनना एक प्यारा जहा लोकगीत, लेकिन इससे पहले एक संदेश।
2: जी
0: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: जी गुलाबो जी, दिखा कितना प्यारा कने मीठा लोकगीत था, है ना।
1: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, लोकगीत मिठे रहिंदे, कने पूरे दिन दी थकान जिहड़ी है से चली आंदी है लोकगीत सुन के, है ना। कने कार्यक्रम है मौजां गराई दियां, कने मौजां गराई दियां कार्यक्रम दे विच अहां अगे वधीए तां अगे देनी अहां जानकारी ठाकुर द्वारा जड़ा हाड़ा ग्रां है हाड़े प्रदेश दे विच, तिथों मढ़ क्षेत्र दे विच अगेती किस्मां दा धान जड़ा सै फसल जड़ी सै तैयार हो चुकी है। कने क्षेत्र दे कई ग्रां दे विच अगेती धान दी किस्मां जड़ा है तिथु दे किसानां जड़े सै भाई यही कने सै पूरे तरीके ने जड़े सै तैयार हो चुकी है। तिथु किसानां हुण 3 अक्तूबर ते मलवा अनाज जड़ी मंडी है तिथु सरकारी खरीद जड़ी सै शुरू होने दा इंतजार करा करदी है, जड़ी कि 3 अक्तूबर जो शुरू होनी है।
0: जी
1: कने मढ़ क्षेत्र दे विच कई किसान अक्तूबर दे विच जड़ा सै गेहूं दी बिजाई शुरू करने ताई अगेती धान दी रुपाई जड़ा सै करदे हन, ताकि टाइमे पर धान दी कटाई करी करी खेतां दे विच जड़ा सै अगेती फसल गेहूं दी जड़ी सै तैयार करी सकन। इस दे सोगे ही किसानां दा कहना है कि धान दी कटाई दे बाद फसल जो लंबे टाइमे तक घरां दे विच रखना तिना जो मुश्किल हो करदा है, कने ऐसे च सरकारी खरीद जल्दी शुरू होने दा तिना जो जड़े सै सुविधा मिला करदी है, कि जड़ी स्कीम है इसे जल्दी शुरू हो करदी 3 अक्टूबर जो है ना। ता एक बड़ी अच्छी गल है कि अगेती फसल जड़ी है धान दी तिना बाइयो थी कने सै तैयार हो चुकी हो, कने हुण तिना ये फसल ले करी अगली जड़ी फसल है हाड़ी गेहूं।

0: दी फसल तिस ताईं तिन्हां जो एक भरपूर टाइम जेड़ा सा मिली सकदा है तिन्हां जो खेत तैयार करना है। कज दिखा जैलू हाड़ी फसल तौले तैयार हो जाती तो अगली फसल की जड़ी तैयारी है हाँ पूरे तरीके ने करी सकते हैं कने एक बड़ी अच्छी गल है।
1: जी
0: इसे सोगी ही 15 दिसंबर तक जड़ी से ये तुम जो दस दी 3 अक्टूबर ते 15 दिसंबर तक ये जड़ी है सरकारी मंडी दे विच जड़ी है से खरीद जड़ी से रहनी है। इन्हें दस्या है कि पिछले सीजन दे विच धान का समर्थन मुल जड़ा सा 2,399 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि इस बारी जड़ा सा 72 रुपये की बढ़ोतरी जड़ी है सह हुई है कने 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित जड़ा सा समर्थन मुल होया है।
1: जी गुलाबू जी तुहां बड़ी बाकी जड़ी जानकारी ऐसे सांझा कीती है कने दिखा साढ़े किसान भाई बड़े मेहनती हैं तिना दी मेहनत दा हीर ये रंग है कि तिना अगेती धान दी फसल जड़ी इसे तैयार कर ली है गाई ली है बस हुण बेचना बाकी है ना।
0: जी बिल्कुल
1: कने अहां अगर अहां अपने उपरी क्षेत्र की गल करन तां इत्थों भी साढ़े जड़े किसान हन तिना दी धान दी फसल जड़ी इसे लर भर करा कर दी है खेतां च है ना। कने अगले जड़ा इसे कुछ दिनों से भी तैयार हो जानी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाने कने इस वेले हाँ जो ध्यान रखना है कि धान दे खेते खेतां दे अखे वखे जड़ा सा गा बढ़ी लेना चाहिए है ताकि चूहा जड़ा सा हाड़े धान दे खेतां जो नुकसान ना पहुंचाए है ना।
1: जी
0: जी
1: तां दिखा इस कन्ने ही जड़ा ऐसा हुण टाइम हो करदा एक प्यारे दे लोक गीत दा तां सुनदे ने प्यारा दे।

0: वाह जी वाह गुलाबू जी, दिखा कितने बांके बांके लोक भजन जड़े इनसे आज यहाँ सुने न, मन जड़ा ऐसे बड़ा खुश हुई है ना
1: जी। बिल्कुल
0: कने भोले शंकर दी यात्रा भी लगी है ना आजकल मणिमहेश है ना
1: जी।
0: सारे जो शुभकामनाएं कने घड़ी दी सुइयां सांझ उठने दा इशारा करा कर दियां। जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा बिपन कुमार और कार्यक्रम प्रस्तुति जतिंदर पाल सिंह। हुण असां दूनी जो कार्यक्रम संपन्न करने दी दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले

0: रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरोम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांग निंगतियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited (BDL) for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons (SAT-SAAW) along with associated equipment for the Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. It is an air-to-ground precision-guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk, and Sukhoi 30 Mark 1 and has the capability to neutralize enemy airfields from a long standoff range. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation (OIC) contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said, "The OIC has no locus standi to pronounce on matters that are strictly internal to India." It said, "The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality." External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated in the India-UAE-France trilateral on the sidelines of the 81st session of the UN General Assembly in New York. The three ministers reviewed progress in trilateral cooperation across agreed areas of mutual interest, including space, energy, artificial intelligence, and culture and heritage. The leaders also discussed the situation in West Asia. President Draupadi Murmu inaugurated the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahmakumaris in Vadodara, Gujarat today. During the event, the president launched the Spiritual Awakening for World Renewal project. She virtually launched the Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. On this occasion, she said that we need such youth power that is inspired by honesty, responsibility, compassion, coexistence, and patriotism. BJP President Nitin Naveen has appointed the parties in charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Former Union Minister Smriti Irani has been appointed BJP in charge for Chhattisgarh and Haryana, while Harish Dwivedi will oversee Bihar. Vinod Tavre has been appointed Uttar Pradesh in charge. Ram Madhav has been given the charge of Tamil Nadu and Uttarakhand, while Tarun Chugh will oversee Gujarat. The Election Commission has said that all decisions, including the electoral roll revision, were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives, and undertaken many electoral reforms, including a special intensive revision, in the recent months across the country. The Commission emphasized that differences in views and observations are a normal part of deliberation in any institution and are integral to the decision-making process. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, today met a

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई बहन कने होर जितने भी श्रोते हैं तिना सबनी जो गुलाबो दी तरफ दे राम राम। किसान साथियों मैं टाड़ी पर आए बैठी हूँ कने दिखा तुझे पता ही है कि आज ग्राम सेवक जी जड़न से टाड़े पर आयो न तो ग्राम सेवक जी तुझे भी राम राम
1: जी। एक बार फिर राम राम गुलाबो जी तुझे भी राम राम कने सारे सुनने वाले श्रोते साढ़े किसान बागवान भाई सारे जो ग्राम सेवक दी भी राम राम
0: जी।
1: कने दिखा एक बारी फ्री ढेर सारी जानकारियां मीठे मीठे प्यारे प्यारे लोकगीत लेकर ही हाजिर होए ना हाँ ट्याले पर है ना
0: जी बिल्कुल।
1: और साढ़े किसान भाइयों जो निहाल पर रहती कि भाई इन्हें बढ़िया बढ़िया लोकगीत भी सुनाने कने गल बात भी करनी है ना।
0: बिल्कुल ग्राम सेवक जी देखा हाड़ा कार्यक्रम खेतीबाड़ी है कने इदे विच हर एक जानकारी यहाँ देने दी कोशिश कर देना चाहे से पशु पालन संबंधी जानकारी होए या फिर बागवानी संबंधी या फिर अन्य व्यवसाय हुई है या फिर होर कोई जानकारी है तो सभी यहाँ तुझे तिकर पुजाने की कोशिश से कर देना।
1: बिल्कुल ठीक गलाया तुसा पर गुलाबो जी एक गल है अज असा कोई जानकारी साझा नहीं करनी अहां सिर्फ अपने किसान भाइयों ने गलबात करनी कने गलबात करनी अहां संस्कारां दी।
0: जी बिल्कुल
1: देखा जी अजकल जड़ा ऐसा थोड़ा समय परिवर्तन जड़ा ऐसा अहां देखा कर देना है ना और इस समय दे परिवर्तन विच क्या है कि साढ़े जड़े बच्चे हैं सह अपने बजुर्गों का जड़ा ऐसा सम्मान किया करन है ना थोड़ा जहा संस्कार देना थोड़ी दी तेना ये समझाना थोड़ी दी गलबात करना जड़ा ऐसा मिंजो लगा कि भई अज टियाली पर थोड़ा अहाँ गल करिए तो बड़ा बांका रहना।
0: जी बिल्कुल अहाँ जानकारी दें दे भी रहते हैं कने देखा अज अहाँ यही जानकारी दिया करते कि अहाँ अपने बुजुर्गों की देख रेख कने तिना की सामभ संभाल किया करनी है ना तो देखा सारिया के घर बड़े होंगे ने बजुर्ग होंगे तो अहाँ जड़ा काम करते न यह सारे ते पहली गल ये है कि जियां अहाँ करना है अपने बड़ियां दी जियां अहाँ सेवा करनी है तियां हाड़े बच्चे भी दिखते हैं कि हाड़े जड़े बड़े न सह हाड़े जड़े बड़े न तिना दी सेवा बजुर्गों की सेवा कियां करते हैं या फिर कियां तिना दा व्यवहार क्या रहिंदा है ना तो ये सारियां गल्लां हाड़ा बच्चा सिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होंदी है सह दिखी नहीं सीखी आंदा है कि हाड़े घर दे विच कैसा व्यवहार होंदा है कने सही गल्लां सह सीखदा है इस करी करी हां जो कोशिश यही करनी है हर घर दे विच यही

0: हमारी प्रार्थना
1: जी
0: है
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल
0: अपने घरां दा जड़ा व्यवहार है, शिष्टाचार है, अपना जड़ा है हाड़ा बड़े ने घरां दे विच ते ना दे प्रति जड़ा सह हाड़ा फर्ज है, सह अहां पूरे तरीके ने निभान। कहिजे देखा टाइम ही ऐसा लग गया है हां जो वाले टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि अहां अपने बुजुर्गां जो जड़ा सह पूरा टाइम दे सकन, लेकिन जालू तकर अहाँ अपनी कोशिश नहीं छड़ गए तालू तकर देखा हाड़े ये फर्ज है हाड़ा कि अहाँ कौन दिया काम जड़ा सा किया करना है अपने बुजुर्गों जो तिना जो कुछ भी ऐसा जरूरत नहीं होंगी कि तिना जो मते भरी पैसों की जरूरत है या फिर तिना जो शाही जड़ा खाना है तिना खाने की जरूरत है, तिना जो खाली ये जरूरत होंगी है कि अहाँ किया तिना का देखभाल करते तिना दे बच्चे अखे बखे जड़ा सा घूमते रहते फिरते रहते सही दिनों का सारे त्या बड़ा सुख जड़ा सा रहा है बुजुर्गों
1: जी
0: का,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल गुलाबो जी, तुहां बिल्कुल इ'यां गहरे चिंतन च पई है। भई मिंजो ये लगा था कि तुहां जड़ा ऐसा बिल्कुल अपने मने दी जड़ी गल ऐसा सांझा कीती है। कने दिखा जी, अजकल जड़ा ऐसा एक अहां बोली सकदे भी मोबाइल दा जमाना है ना,
0: जी
1: टीवी दा जमाना है। पहले टाइम च रेडियो होंदा हा, रेडियो लगाई दित्ता था, सारे परिवारे दे सुनदे भी रहंदे थे, कने रेडियो भी लग्या होंदा था। लेकिन अजकल जड़ा ऐसा मोबाइल दा जमाना है, ता बच्चे क्या करा दे भी अपना मोबाइल लेके अपने अलग कमरे च जाई के बैठा दे। कने भाई अपने माता पिता या होर जड़े भी परिवार च सदस्य हैं, तिना कने मिलने बैठने वास्ते जड़ा ऐसा तिना कोई खास समय जड़ा ऐसा नहीं निकाला करते, जिस ते तिना च जड़ा ऐसा अनुभवां दी कमी होई जा दी। बजुर्गों के जड़े अनुभव न, तिना ऐसा ले ही नहीं पा दे, तिना दा जड़ा ऐसा आदर सम्मान नहीं करी पा देन, ये एक कमी जड़ी ऐसा समाज विच लगा कर दी है।
0: जी बिल्कुल दिखा फोन एक ऐसी चीज़ है ग्राम सेवक जी जिदे बच्चे फायदे भी बड़े भारी न, लेकिन कुछ एक जितने फायदे न उतने नुकसान भी फोन दे बिच हैं। इसा करी करी अहाँ जड़े अपने अभिभावक होंगे न बच्चों के बड़े होंगे न तिना ने ये हाड़ा आग्रह रहा है कि सह अपने बच्चों जो एक टाइम टेबल बनान कि कितना टाइम जड़ा सह तो हाँ पढ़ाई करनी है, कितना टाइम तो हाँ बाहर खेलना है, कितना टाइम तो हाँ अंदर बैठ के खेलना है या फिर टीवी देखना है या फिर मोबाइल लेना है, ये सारिया चीज़ों का एक ऐसा टाइम बनाओ शुरू से ही। अगर तुम टाइम बना दे तो थोड़ा बच्चा आपू ही इसी तरीके ने सही तरीका जड़ा सा अपना जड़ा बड़े होई करी भी सही तरीका जड़ा सा अपनांदा है,
1: जी
0: तो इसी
1: बिल्कुल
0: एक आदत बनी आती है कि मैं कुछ टाइम में खेलना है कुछ टाइम में पढ़ना है कितना कौन चीज़ जड़ी ऐसा इस्तेमाल करनी है। इस दे
1: जी
0: सोगी ही हाँ जो अपने बच्चों जो जड़ी वैल्यू जड़ी होंगी है ना जिसे अहाँ गलांदे कि पैसे दी वैल्यू या फिर ही कम्मे दी वैल्यू कि कम कर दे ना हाँ अनाज कटते खेतों के विच तिदे विच हाँ जो कितनी मेहनत पौंदी है ये भी हाड़े बच्चें जो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए है। बच्चे छोटे होंदे तो तिना ते बड़े काम नहीं ले करी अपने सोगी जरूर ले करी जा तिना जो कि खेतां दे विच कियां काम कर देना कितनी मेहनत लगती है, कने छोटे छोटे काम जड़े से तो हाँ अपने बच्चों ते कराई सकते ताकि तिना जो पता लगे कि कियां करी काम जड़ा सा होंदा है ना।
1: जी बिल्कुल गुलाबो जी, दिखा काम तो साढ़े बच्चे करा ही करते ना, करते भी हैं। कने मेन अहा मुख्य जड़े गलबात करा करते हैं, सह ये है कि भई अपने जड़े घरे के सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तिन्हें ये मान सम्मान अहा देना है ना।
0: जी
1: कने
0: बिल्कुल
1: तिन्हें भावना की कदर करनी है। अहाँ बाकी कुछ नहीं कर सकते, तो घटते घट अहाँ इतना कर सकते कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं सह इकट्ठे हो कि अहाँ खाना खाई सकते है ना।
0: जी बिल्कुल
1: कने 2 घड़ियाँ जड़ा ऐसा खाना खाई के 2 घड़ियाँ गपशप मारी सकते है ना। कने इक्की दुए के जड़े ऐसा गलबात सुनी सकते, तिसते क्या है कि सारे का जड़ा ऐसा गलबात करके मन हल्का हो जाता। कने जड़े साढ़े बुजुर्ग हैं, तिन्हें भी कोई सिख सलाह देनी होवे तो सभी कोई सिख सलाह देंदे, कोई अनुभव अपनी साझा करते हैं। तो इस तरीके ने अगर अहाँ अपने बुजुर्गों का सम्मान करगे तो समाज जड़ा ऐसा बढ़िया और संस्कारी बनी सकता।
0: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी
1: तो दिखा इस कने जड़ा ऐसा प्यारे दे लोक गीत समय हो करता है, तो सुन दे प्यारा दे लोक गीत।
0: लोग जी।

0: जी गुलाबो जी दिखा जी, घरे तो जाना ही पौना है ना, कने घरे तो कदों आना, पर अहां तो भाई अपने टियाले पर गपशप मारनी है, लोक गीत सुनने सुनाने ना, घरे तो ताई जाना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: कने दिखा जी गल है कि भाई अहां गल करा दे बजुर्गों के सम्मान दी, तिना दे आदर सम्मान दी है ना,
1: जी
0: तो ये तो बड़ी जरूरी है कि अपने बड़े बुजुर्गों का जोड़ा ऐसा मान सम्मान करना चाहिए। कने अजकल जोड़ा ऐसा साढ़े बच्चे क्या करा दे भाई, बुजुर्गों के अखे बखे निकली आ दे, इन्होंने गल भी नहीं करते,
1: जी बिल्कुल
0: तो ये
1: खरीद
0: भी एक थोड़ी दी संस्कार देने की जरूरत है कि साढ़े आस पास कोई अगर बुजुर्ग चलिया हुआ है तो इन्हें जरूर जोड़ा ऐसा राम सलाम करा, तिना के चरण स्पर्श करा, आशीर्वाद लिया है ना,
1: जी
0: कने हो ही सके तो तिना का जोड़ा थैला या बैग है जो भी है तिशियो भी अहाँ थोड़ी दूर तक जोड़ा ऐसा तिना का साथ दे सकते हैं।
1: बिल्कुल जी
0: कने इस तरीके के जोड़े ऐसे संस्कार सो आत्मीय जोड़ा ऐसा संतुष्टि देंगे ने, साड़ी आत्मा जो साढ़े मन जो जोड़ा ऐसा संतुष्टि मिलती है, और संस्कार जोड़े ऐसा ही सफलता का एक साधन होंगे ने। तो ये तो गलबात रही, कने उपरे तो दिखा साढ़े बुजुर्ग अगर अहाँ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो तिना सो कई पुराने गल्ला जड़ियाँ असें दसनिया, कने तिना दसना सो कि दिखा पुराने टाइम च किस तरह की खेती बाड़ी होंगी थी, गोबर खाद का इस्तेमाल होंदा था है ना, कने प्राकृतिक तरीके कने जड़ा ऐसा खेती बाड़ी करते थे।
1: जी बिल्कुल ग्राम सेवक
0: और
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल ठीक तो हाँ गला कर दे कि हाड़े जड़े पुराने बुजुर्ग थे तिना दे कम्मा कारा दा जड़ा हिसाब किताब था सह बिल्कुल अज दे जमाने ते अलग था है ना। कहे जे सह गोबर दी खाद जड़ा सह पांदे हे जिसी ओ अज दे टाइम दे विच शून्य लागत प्राकृतिक खेती बोलदे न सह वाली खेती जड़े सह हाड़े बुजुर्ग जड़ा सह अपनांदे थे। कने तिने जो पता भी नहीं हा कि कोई चीज बाहरे ते खरीद करी ले आई करी जड़ा सा हाँ खेती बाड़ी करनी है ना तो कोई भी सा बीया ते ले करी खादा ते ले करी कीटनाशक ते ले करी जड़ा सा घर दे विच जड़ा सा खादा ते ले करी तैयार करते थे। कने तिने चीज़ें दा इस्तेमाल करते थे ताई करी जड़ा सा हारे जड़े बुजुर्गों

0: हमेशा
1: हष्ट पुष्ट
0: स्वस्थ
1: होने थे।
0: रहते थे, है
1: बिल्कुल
0: ना
1: बिल्कुल ठीक लाए तो
0: जी?
1: हाँ, कहने दिखा तेना दी सेहत, कहने तेना दी पग, है ना, साफा
0: बिल्कुल
1: तेना दे जरूर होंदा है ना।
0: जी,
1: कहने
0: बिल्कुल
1: दिखा जी मतलब ये है कि अगर अहाँ बुजुर्गों का सम्मान कर गए, तेना दी गलबात सुन गए, तेना दे अनुभव सुन गए, तो हाँ तिस्ते कुछ ना कुछ जरूर सीखना ही है।
0: बिल्कुल, बुजुर्गों का सम्मान करना है, तिना दे अनुभव सीखने हैं, कने सोगी सोगी आधुनिक तकनीक जो अपनाना हाँ ता दुगना फायदा हाँ जो हो सकता है। हाड़े बुजुर्गों के जड़े अनुभव न तिना जो मिलाई करी, कने जड़ी नोई हाड़ी तकनीक है, थोड़ा तिसा दा उपयोग करी करी अहाँ कम करन अज दे टाइम दे विच, ता हाँ जो काफ़ी मुनाफा जड़ा से अपने काम दे विच जड़ा से हो सकता है ना।
1: बिल्कुल मैं थोड़ा इशारा समझी गया भाई, थोड़ा गलाने का मतलब यह है कि भाई खेतीबाड़ी का तो हाँ प्राकृतिक तरीके ने करा, लेकिन इसकी कटाई गहाई जड़ी है सह हाँ आधुनिक मशीनों कने करी सकते हैं, तो कमे च भी तौल हो जाती, कने जड़ा
0: टाइम
1: सह
0: भी घट
1: समय
0: लगता
1: भी बचता है
0: जी,
1: ना।
0: बिल्कुल
1: तो इतना रही गलबात गुलाबो जी, कने थोड़ा दिया मनोरंजन का थोड़ा दिया और समय है, तो एक प्यारा दिया लोकगीत सुन देना।
0: जी, बिल्कुल।

0: गुलाबो जी बस करा तो वहां फराटियां लाई लाई के थकी नहीं गए।
1: दिखा ग्राम सेवक जी दिखा तो हाँ गाना ही इतना बढ़िया लाया था, फराटियां था निकली आनी है ना आपको ही।
0: हाँ भाई देखा कितना बांका लोग भजन था है ना,
1: जी बिल्कुल
0: कहना ये तो साड़ा जेड़े बोलते ना भाई ब्याह शादियां च भी अजकल ये बड़ा बांका गीत जेड़ा ऐसा लग गया हुआ था नचने जेड़ा ऐसा दिल करी पौंदा है ना।
1: बिल्कुल, फराटी तो आपू ही लगी आंदी है ना, कने दिखा कार्यक्रम खेती बाड़ी है कने हुण। हाँ हाँ कार्यक्रम दे विच अगे वधना तां देनी है मौसम दी जानकारी है ना।
0: जी जी
1: तां मौसम दी अज दी गल करिए तां धर्मशाला दा अज दा तापमान जिहड़ा सै 30 डिग्री रहा है, अधिकतम कने न्यूनतम रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। चंबा दी गल करिए तां अधिकतम तापमान 25 डिग्री कने न्यूनतम 15 डिग्री रहा है। कुल्लू दा अज दा अधिकतम तापमान 22 डिग्री कने न्यूनतम 14 डिग्री रहा है। सुंदरनगर दी गल करिए तां 30 डिग्री अधिकतम कने न्यूनतम जिहड़ा सै 24 डिग्री रहा है। उना दा अधिकतम तापमान 31 डिग्री कने न्यूनतम 23 डिग्री रहा है।
0: जी
1: शिमला की गल करिए तां 25 डिग्री अधिकतम कने न्यूनतम जिहड़ा सै 14 डिग्री रहा है।
0: जी बिल्कुल
1: अगले जिहड़े 2-3 दिन ग्राम सेवक जी सै मौसम जिहड़ा सै
0: साफ
1: साफ
0: ही
1: ही
0: रहने
1: होने
0: की
1: रहने दी
0: संभावना है।
1: संभावना है
0: ठीक
1: ना।
0: है जी, तो इस कने ही गुलाबो जी तो जो स्थानीय कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक मूल्य भाव दी जानकारी भी यहाँ दे दी है ना।
1: जी
0: तो आलू रे 12 ते 22 रुपए प्रति किलो, प्याज 52 ते 54 रुपए प्रति किलो, टमाटर 25 ते 28 रुपए, लहसुन 200 ते 230 रुपए प्रति किलो, अदरक रे 100 ते 130 रुपए, शिमला मिर्च 65 ते 70 रुपए, अरबी 28 ते 30 रुपए, खीरा 40 ते 45 रुपए, कने फलों की जड़ी है सह गल तो हाँ दसी दिया भी फलों का रेट जड़े सह क्या कुछ रहे।
1: जी बिल्कुल, फल दे विच सारे ते पहले सेब दी गल करिए ग्राम सेवक जी, ता 40 ते 110 रुपये, केला रहा है 40 ते 50 रुपये प्रति दर्जन, अनार 50 ते 120 रुपये प्रति किलो, अनानास 40 ते 45, अमरूद दी गल करिए ता 100 ते 120, मौसमी 40 ते 50 रुपया, पपीता 40 ते 50, कने संतरे दी गल करिए तो 100 ते 120, नींबू रहा है 170 ते 180 रुपये प्रति किलो, कने नाशपाती रही है 50 ते 70 रुपये प्रति किलो।
0: जी तो हुण एक प्यारा दयालु गीत और सुन लैंदे।
1: जी बिल्कुल।

0: जी किसान साथियों, इसी लोकगीत दसोगे हाड़े कार्यक्रम खेतीबाड़ी दा टाइम इत्थों ही संपन्न हुआ दा है। जाने दे पहले दस दईए कार्यक्रम दे विच तकनीकी सहयोग दिता है बिपिन कुमार ने, कने प्रस्तुति थी जितेंद्र पाल सिंह दी। हुण आहा दुनी जो दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:42 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, पेंशन एरियर को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को बचे हुए पूरे पेंशन एरियर का होगा 100% भुगतान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस की बहाल, हर वायदा चरणबद्ध ढंग से होगा पूरा। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक रविवार 27 सितंबर को रहेंगे खुले। राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के धनेटा में आयुर्वेद कॉलेज व एम्स स्तर का संस्थान खोलने का लिया निर्णय। और घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर को लेकर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन सतर्क, उपायुक्त ने लिया स्थिति का जायजा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एरियर को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को बचे हुए पूरे पेंशन एरियर का 100% भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को कुल एरियर का अतिरिक्त 15% दिया जाएगा, जो पहले मिले एरियर के अलावा होगा। ये एरियर इस महीने की पेंशन के साथ दिया जाएगा, जो अगले महीने खाते में आएगी। आज जारी आदेश के अनुसार यदि किसी पेंशनर को ज्यादा भुगतान हुआ है तो वो एरियर से एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में 21 सितंबर को जारी किए गए आदेश को रद्द माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों के साथ किए गए हर वायदे को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया जा रहा है। उन्होंने आज सिरमौर जिले में रेणुका क्षेत्र के माइना में एक कार्यक्रम में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वायदा पूरा किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य परिवहन निगम के लगभग 11,000 कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अनेक मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। अभियान के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए और 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। अभियान का दूसरा चरण वर्ष 2021 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों में स्वच्छता के

0: प्रति जागरूकता बढ़ी है।
1: क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का एक अहम फैक्टर शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी है। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स के निर्माण तक सीमित नहीं है, इस अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। हमारे शहरों में बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बहुत बड़ी समस्या बन गए। अब ऐसे कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है और हम कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल के मंत्र पर काम कर रहे हैं।
0: आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इस मौके पर शिमला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने आयुर्वेद पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है।
2: लोगों का आकर्षण बड़ा है और मैं समझता हूँ कि जब कोरोना हुआ था तो लोगों ने काफी ज्यादा आकर्षण इसके ऊपर दिया था आयुष विभाग में, और हम देखते हैं कि कई लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एलोपैथी से छोड़ के जो है हमारे पास आयुर्वेदा में आते हैं, चाहे वो पंचकर्मा करवाते हैं या कोई और मसाज लेते हैं जिससे कि उनकी बीमारियों में जो है वो राहत मिली है। पंचकर्मा को बढ़ाने के लिए हमने वेलनेस पंचकर्मा जो है वो स्टार्टअप किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने शुरू किया है, और साथ में हमने अभी 216 जो है हमारे टेक्नीशियन जो है हमने इस साल जो है वो उनका कोर्स भी जो है वो चालू कर दिया।
0: सेवा ही संकल्प अभियान के तहत आयुर्वेद दिवस पर भाजपा द्वारा आज सोलन में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मरीजों की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां बांटी गई। भाजपा समस्त प्रकोष्ठ संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि सेवा ही संकल्प अभियान के तहत पार्टी द्वारा सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
3: आयुर्वेद दिवस इस रूप में मनाया क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को हम सब ने मनाया और भारतीय जनता पार्टी ने 17 अक्टूबर तक देश में विभिन्न सेवा के काम, संकल्प के काम और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के काम पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। यानी कि कुल मिलाकर एक महीने तक इस तरह के सारे आयोजन सेवा कार्य देश भर में चलेंगे। उसी कड़ी में आज का ये फ्री जांच का जो शिविर रखा है ये भी उसी को समर्पित है।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
5: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
4: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज ना करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से इस महीने की 28 से 30 तारीख तक बुलाई गई 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के धनेटा में आयुर्वेद कॉलेज व एम्स स्तर का उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर जिले के लंबलू में आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित चिकित्सा शिविर के शुभारंभ अवसर पर यह जानकारी दी। बिट्टू ने कहा कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और योग हमें जिंदगी भर पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई सराहनीय निर्णय लिए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जोल सप्पड़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के नए कैंपस में नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज के साथ अलाइड हेल्थ सर्विसेज कॉलेज का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में ही कैंसर केयर संस्थान, एक अलग मातृ शिशु अस्पताल और क्रिटिकल केयर यूनिट भी स्थापित की जाएगी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा

0: नगर निगम, सिटी सेंटर और कई बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिससे हमीरपुर को एक नई पहचान मिल रही है। लाहौल स्पीति जिले में घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर व संभावित जोखिम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने आज 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर घेपन झील में स्थिति का जायजा लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर और संभावित जोखिम को लेकर लाहौल स्पीति प्रशासन सतर्क है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बुधवार को करीब 14 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई कर स्वयं घेपन झील पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने झील के जलस्तर, आसपास के भूभाग और पानी के संभावित बहाव मार्ग का निरीक्षण किया। घेपन झील करीब 4,070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रशासन यहां पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। उपायुक्त का स्वयं दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना प्रशासन की गंभीरता और लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सुशील कुमार सिंगला ने कहा है कि ठोस कचरा प्रबंधन अब समाज के हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद देश में नए नियमों को लेकर जागरूकता अभियान तेज हो गया है। सिंगला ने कहा है कि नदियों को बचाने के लिए नालों पर जाली और ट्रैश बैरियर लगाना अनिवार्य होगा।
2: हमारी कोशिश होगी कि एक साल में कि जो हमारी स्वच्छता रैंकिंग होती है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट, रूरल, हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई एक दो सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या कि हम एक साल के अंदर टारगेट रखें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है। जब तक समाज के अंदर जागरूकता नहीं होगी, जब तक हम सब मिलकर सोचेंगे नहीं कि हमको पर्यावरण को कैसे बचाना, उसी दिशा में ये कदम है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर कोई पोल्यूशन कर रहा है तो उस पर हम इंस्पेक्शन करें, उसको फाइन करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेंशन एरियर को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को बचे हुए पूरे पेंशन एरियर का होगा 100% भुगतान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस की बहाल, हर वायदा चरणबद्ध ढंग से होगा पूरा। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक रविवार 27 सितम्बर को रहेंगे खुले। राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के धनेटा में आयुर्वेद कॉलेज व एम्स स्तर का संस्थान खोलने का लिया निर्णय और घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर को लेकर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन सतर्क, उपायुक्त ने लिया स्थिति का जायजा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचारों में आइए सुने एक अधिसूचना। नवोदय विद्यालय समिति, जो कि शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्था है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत सत्र 2027-28 के लिए देश के प्रत्येक जिले के जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 की खाली सीटों के लिए 10 अप्रैल 2027 को लेटरल एंट्री परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/9/2026 है। विवरण पत्रिका यानी प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक्स पर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 के लिए https://cbseitms.ac.in/

0: nic.in/2026/nvsix9 और कक्षा 11 के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi11। अधिसूचना समाप्त हुई।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 की डेली हाइलाइट्स रिले की जाएंगी।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए इस गीत के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

अभी आप सुन रही थी देशभक्ति की थी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
4: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने

0: हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: आंध्र ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
5: एशियाई खेलों में रोशोबीना देवी वुशू के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
6: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
5: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाश धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने

0: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: Earlier, President attended the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda. She conferred gold medals and degrees to the students. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Atal Innovation Mission.
2: Atal Innovation Mission, which was set up in 2016, is Government of India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. Under the Niti Aayog, the mission has taken a holistic approach to ensure creation of a problem-solving innovative mindset in schools and creating an ecosystem of entrepreneurship in universities, research institutions, private and MSME sector. Sharing his thoughts in the Man Ki Baat program on Akashvani in 2016, Prime Minister Narendra Modi had said that government has taken steps to attract new generation towards science and research through Atal Innovation Mission.
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए, और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, entrepreneurship, ये एक सिलसिला चले।
2: Talking to Akashvani News, Soumya, a student, said that Atal Tinkering Labs under the mission made her understand that skills and innovative thoughts help students to make their futures bright.
4: Hi, I am Soumya from 9th grade at Telangana Model School, Bullaram. Before joining ATL classes, I think that studies and subjects were more important for every student. But after joining the ATL class, I learned that how skills and innovative thoughts help students to make their futures bright. Here, I learned many new things like Arduinos and sensors, how they work and how they use in our daily lives.
2: Atal Innovation Mission is creating and promoting a vibrant culture of innovation and entrepreneurship across the length and breadth of India. It is creating employment, products and innovative processes by fostering collaboration, vision and passion. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: A deep depression over the Bay of Bengal is moving towards the North Andhra Pradesh South Odisha coast and is expected to cross tonight. The system is likely to cross near Kalingapatnam between tonight and early hours of tomorrow, bringing very heavy to extremely heavy rain and squally winds. Indian men's badminton team settled for the bronze medal after facing a 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan today. Indian player Lakshya Sen lost the opening match 21-16-21-18 to Shi Yuki before Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty leveled the tie with a 21-11-21-20 win over reigning world champions Liang Wei King and Wang Hyang. The bronze medal takes India's overall tally to 12 medals, 1 gold, 5 silver and 6 bronze. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defense Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settled for bronze, taking overall tally to 12 medals, including 1 gold. And that's all in the news at 9. Good night.
5: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गीतकार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गीतकार हसरत जयपुरी के बारे में। जी दोस्तों, हिंदी सिनेमा के महान और अमर गीतकार हसरत जयपुरी, उनका जन्म 15 अप्रैल 1922 को जयपुर राजस्थान में हुआ था और उन्होंने अपने रोमानी गीतों और शायरी से भारतीय संगीत जगत में अमिट छाप छोड़ी और 17 सितंबर 1999 को उनका निधन हो गया। तो उनके प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो शुरुआती अंग्रेजी शिक्षा के बाद अपने नाना फिदा हुसैन फिदा से उर्दू और फारसी उन्होंने सीखी और अपने जीवन यापन के लिए वर्ष 1940 में वो मुंबई आए और शुरुआती दिनों में उन्होंने मुंबई में बसों में बस कंडक्टर के रूप में भी कार्य किया था, माफ़ कीजिएगा, और साथ ही वो मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे और एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने उनकी शायरी सुनी और फिर राज कपूर से उनकी सिफारिश भी की। उन्होंने पहला गीत जो है वो राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए वर्ष 1949 में गाया था और पहला गाना जो था उनका जिया बेकरार है छाई बहार है, ये गीत उन्होंने पहला जो था वो लिखा था फिल्म बरसात के लिए। और उसके बाद संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के साथ मिलकर उन्होंने राज कपूर की फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गीत जो है वो दिए। तो सुनवाते हैं आपको उन्हीं का लिखा हुआ एक प्यारा सा गीत फिल्म चोरी चोरी से।

ये खूबसूरत सा गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना और फिल्म थी चोरी चोरी। और हम बात कर रहे हैं आज मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के साथ मिलकर उन्होंने राज कपूर की फिल्मों के लिए बहुत सारे सुपरहिट गीत जो है वो दिए। और उनके प्रसिद्ध गीतों की अगर बात करें तो बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ ना होना, ये गीत बहुत ही सुपरहिट जो थे वो रहे थे। तो आइए सुनवाते हैं आपको एक और गीत उन्हीं का लिखा हुआ।

जी दोस्तों, हसरत जयपुरी को अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जो था वो मिला था। वर्ष 1966 और 67 में फिल्म सूरज के सदाबहार गीत बहारो फूल बरसाओ के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और उसके बाद वर्ष 1972 की फिल्म अंदाज के सुपरहिट और ऊर्जावान गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और साथ ही उन्हें फिल्म मेरे हुजूर में ब्रज भाषा में लिखे गए उनके विशेष गीत झनक झनक तोरी बाजे पायलिया के छंदों और उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी। इन्हीं मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है, इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
3: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं। तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
2: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहां ये कार्ड काम नहीं आता है?
3: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहां जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है। ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल एक दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है, आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन OTP के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्युइन पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है NHA के IT सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है। और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं, और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेज हैं जिसमें है, इसमें शामिल है। कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेज हैं, कैटरैक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेज इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था, और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी, और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से, और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया है। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजेक्शन संभव हो पाते हैं।
2: सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
3: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है, जो रोबस्ट सिस्टम है, और इसके 4 मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1455 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए, और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है, इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे ले। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है, और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
2: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य ID तक यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुँचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है, जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है, और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है, जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है
0: और अब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्टाफ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह चार स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव ना करना पड़े।
2: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है, लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे? कैसे?
3: चार माध्यम रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है, बल्कि शिकायत भी कर सकता है। तो शिकायत के लिए भी ये चारों चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है, जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं। और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा। तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं, बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपये की भी मांग की जाती है, तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे, ताकि ये पता चला किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपये भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है, कॉल सेंटर और ये लग करके करती है, और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
2: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं, और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
3: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है, 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs, ये सारे इम्पैनल्ड है। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट है। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल है, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है, हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं, जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे। और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है, शायद ही कुछ जिले बचे हों।

0: यहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध हैं, वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है, ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा, और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं, वहाँ अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पर हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, ताकि वो वहाँ पे न केवल सर्वाइव करें, वो बेहतर कार्य कर सकें।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए, उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
0: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा, एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है जिस बीमारी के इलाज में उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है, ताकि वहां से हम सारे इंफॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज की क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड हैं वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब नए हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया है।
1: सर, इस योजना में रोज आपने बताया कि किस तरह से 70-80 हजार का आंकड़ा रहता है जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका ये भी रहती है कि कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनावश्यक इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
0: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत पीएमजे में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का कॉस्ट अलग और कंज्यूमेबल्स का अलग, ऑपरेशन का अलग नहीं है, वो सब मिला करके एक बंडल्ड कॉस्ट है। नी ट्रांसप्लांट का बंडल्ड कॉस्ट है, डायलिसिस का बंडल्ड कॉस्ट है। तो अगर आपने ज्यादा इलाज कराया तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें 3 कैटेगरी आता है। एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और 2-3 पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में 2 और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट 4 जगह लगाए हैं या एक ही लेंस 4 जगह लगाए हैं, वो पकड़ना जरूरी है।
1: जी, डुप्लीकेसी हो गई।
0: डुप्लीकेसी हो गई,
1: या कह लीजिए
0: तो
1: डबल।
0: हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है, और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं, और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए, और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है, उनसे हम एस्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी एस्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 times तक उस पे पेनल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन FIR भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और AI का यूज कर रहे हैं, जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं, और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको OCR टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत है, वैल्यू बहुत कम है। तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th year में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है। तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है, और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जा करके इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये PMJ के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी, परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा?

0: कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
1: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है। अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है कई बार अकेले ही आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी NHA कोशिश कर रहा है करने का।
0: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
1: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो IT सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज करा है, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या हैं, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन IT एक्सपर्टीज हासिल करेगा और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
0: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार आकाशवाणी
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन, राग सोनी के अंतर्गत।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, और आज के कार्यक्रम में आपने सुना पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, फिल्म है इज्जत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: दर्द फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान

0: ब्रह्मचारी फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है नौशाद ने।

जी हाँ श्रोताओं, तो कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं भरोसा फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और धुन बनाई है रवि ने।